किसान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ ऑल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ ऑल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। That's 8574-8410. Safo Travel. Auto protected.

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीठा हासिल कीजिए।
1: दिस इज लाइक अ रेडियो।

0: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक.
1: यू नो हाउ यूके वेदर कैन डू फुल ड्रामा विद आवर हेयर. वन डे फ्रिज, वन डे फ्लैट. दैट्स व्हाई आई स्विच टू सिदायु हेयर ऑयल. इट्स प्रॉपर प्रीमियम लाइट, नॉन स्टिकी एंड मेड विद रियल आयुर्वेदिक हर्ब्स. मम लव्स इट बिकॉज इट्स ट्रेडिशनल. आई लव इट बिकॉज इट एक्चुअली वर्क्स. स्ट्रॉन्गर रूट्स, लेस हेयर फॉल एंड दैट हेल्थी शाइन यू नोटिस स्ट्रेट अवे फ्रॉम द हाउस ऑफ बेदियानाथ. विद ओवर 100 इयर्स ऑफ आयुर्वेदिक लेगेसी अवेलेबल एट ऑल क्वालिटी फूड स्टोर्स एंड अदर लीडिंग रिटेल स्टोर्स अक्रॉस द यूके. Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic Vada Pav, now in Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, has opened its newest store at R1, Hale Place, Manchester, Arndale, M43AB. Be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav. We'll see you there.
2: कुछ लोगों की कहानियाँ उनकी मर्जी से खत्म नहीं होती.
3: A story of love, redemption and second chances returns to the big screen.
2: दर्द से पुराना रिश्ता है मेरा.
3: इमरान हाशमी is back in the much awaited sequel, Awarapan 2.
2: इस बार या तो ये आवारापन खत्म होगा या मैं.
3: Witness powerful emotions, breathtaking action and a soundtrack that stays with you long after the credits roll. Releasing in cinemas from August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Vikrania Media on Instagram.
4: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
5: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
4: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
4: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
6: Bring your vision to reality with ImagineX Global. Our team of Imagineers create immersive experiences from digital content to epic live events. Whether it's a high-energy concert, an innovative conference, sleek brand visuals or stunning photography and videography, for your special moments, we have you covered. We're a tech-driven, human-led creative experience company delivering cutting-edge digital solutions and expert event management. Let's turn your ideas into epic memories. Contact us today at ImagineXGlobal.com or WhatsApp 0758 580 1801 and let your ideas take center stage. ImagineX Global, where creativity, technology and humanity unite the world.
7: This is the Leica Radio Network. Download the Leica Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Leica Radio Greater London, Leica Radio Greater Manchester and Leica Gold Radio.
8: मैं हूं इब्न ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक.
7: द ब्रेकफास्ट प्लान परफेक्टली ब्रूड बाय यू, डॉनी ब्रास्को ऑन लाइका रेडियो. द डायमंड ट्रैक ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स.

0: Breaker Radio.
1: Right, Janab, welcome back and back to back teen gaano ke baad. Monday morning. हफ्ते के काम के आगाज का पहला दिन प्रोग्राम बज़्म ताबिश की इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो मेरी और आपके दिलों के भेद खूब जानता है। परवरदिगार आलम का लाख लाख एहसान कि उसने जिंदगी की एक और सुबह एक और दिन देखना नसीब किया। भरपूर मसरूफ तरीन वीकेंड गुजारने के बाद यकीनन आपने भी अब शांत का नाम लिया होगा। शांत मीन्स आराम से काम पे चढ़े होंगे। काम तो करना है, काम काम और सिर्फ काम, और जिंदगी ना काम हो ही नहीं सकता। जिंदगी की कामयाबी की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा कारण है वो कामयाबी में काम करना है जी। और जो लोग कुछ नहीं करते, काम नहीं करते, वो लोग तो मेरी तरह कमाल करते हैं। अगस्त महीने की 10 तारीख हो गई जनाब, आज 10 अगस्त। हमारी डायरी के पन्ने पे तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन बहरहाल आप बताएंगे ना मुझे, आपके यहाँ किसी की बर्थडे है, वेडिंग एनिवर्सरी है, खुशी का कोई लम्हा है, नौकरी लग गई है, डेट फिक्स हो गई है, किसी से नई नई दोस्ती हो गई है, या दोस्ती का भांडा फूट गया है। न जाने जिंदगी में क्या क्या होता है, इंसान क्या क्या सोचता है, लेकिन बहरहाल आप अपने छोटे से मेरी तरह दिमाग पे ज्यादा जोर न दे। आज के प्रोग्राम भी हर हफ्ते की मंडी की तरह बहुत ही छेल छबीला और छमिया टाइप का होगा।
2: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर्ड बाय कोका नूडल्स, गुडनेस इन एवरी बाइट, ट्राई इट टुडे, अवेलेबल इन योर नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर।
3: Like our radio.
4: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
5: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
4: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
7: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
8: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Touring to the Palace Theatre, Manchester, Friday the 4th of September to Saturday the 5th of September. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, Panto fun for all the family.
9: Radio partner, Live.

0: क्या कुछ याद आया? मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, तो मुश्किलों को हल करने आ गया ना मैं। इब्तिताविश आज से लेके जुमे तक।
1: Like a radio.
0: जी हाँ जी, मंडे टू फ्राइडे बस बिताविश जो कि ऑफिशियल मिड मॉर्निंग शो होता है। कहते हैं कि जो होता है मंजूर खुदा होता है, जो भी कुछ होता है अच्छे ही के लिए होता है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जिसमें हम सोचते हैं यार क्या हो गया, ये ऐसा नहीं होना था, लेकिन न जाने फिर इसके बदले में आपको बहुत सारी अच्छे काम भी हो जाते हैं कभी कभी। वो कहते हैं ना कि अगर ये वो वक्त नहीं रहा तो ये वक्त भी नहीं रहेगा। तो वक्त तो बदल जाता है साहब। अभी पिछले हफ्ते की बात है, हर हफ्ते मंडे के मंडे में आपसे कहता हूँ कैसा रहा आपका, कैसा गुजरा वीकेंड, और फिर मंडे आ जाता है, फिर जुमे का दिन आता है, मैं कहता हूँ मेरी दो दिन की छुट्टी है, मैं मजे करूंगा, वीकेंड मनाऊंगा, और यूं हफ्ते हफ्ते हफ्ते रोजाना जिंदगी का एक दिन कम हो जाता है। तमाम साथियों को बहुत ही मुअद्दबाना सा सलाम, कबूल कीजिए प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल, केम छो, केमें आजन, भली करी आया, जी आया नू, अहलन व सहलन, मरहबा एंड वश अतके। मंडे मॉर्निंग प्रोग्राम की रूपरेखा वही होगी, कुछ नए कुछ पुराने 80s, 90s, 2000 के गीत आपको सुनवाएंगे, पाकिस्तानी क्लासिक और इंडियन क्लासिक बॉलीवुड सॉन्ग तो शामिल होगा ही, और साथ साथ लतीफे, शगुफे और आज का रिडल, आज का रिडल, आज की पहेली। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले अभी से जहनी आजमाइश को देखते हैं जरा, आपकी जहनी आजमाइश, ढूंढते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे, वो क्या है, वो क्या है जो दिन में एक बार आता है, रात भी दो बार आता है, और साल भर तो आता ही नहीं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: हाँ जी, करेंसी के रेट ताजा तरीन करेंसी अपडेट आपको देते हैं। US डॉलर 1.34 का है आज, 1.34 पूरे हफ्ते यही रेट रहा। इंडियन रुपीज में 128.66 रुपए, पाकिस्तानी रुपीज में 375.46 रुपए, बांग्लादेशी टका 168.33 रुपए, श्रीलंकन रुपीज 452.49 रुपए और अफगानी रुपीज 88.12 रुपए।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: हाँ जी, अगस्त का महीना शुरू हो चुका और दुबई की हॉलीडेज की जो ऑफर्स हैं साउथल वालों ने अभी तक खत्म नहीं की, बंद नहीं की, लिहाजा इस ऑफर से फायदा उठाइए और दुबई के लिए तैयारियां पकड़ लीजिए, और बहुत सारे ऑफर्स और टर्म्स कंडीशन के साथ साथ एटोल प्रोटेक्टेड है, और नंबर इनका है, अभी कॉल कीजिए 0208-574-8410।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is LIKA Radio News Update.
0: और अब मिस बॉन्डिंग शो में उर्दू के खास खास हेडलाइन। इसराइल ने गजा बहाली का अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। ईरान के पास अपने फौजियों को तनख्वाहें देने के लिए रकम नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ईरान में आप नए हरमत से किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा, साबिक ईरानी चीफ जस्टिस ने कहा। और ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का जल्द पहली बार आवाम के सामने आने का ऐलान। ट्रंप ईरान जंग हार चुके, डेमोक्रेटिक सीनियर क्रिस मर्फी ने कहा। चीन में समंदरी तूफान डॉल्फिन कमजोर, बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी। रूस के इलाके बलगोरो पर यूक्रेन का ड्रोन हमला, 3 अफराद हलाक और 25 जख्मी हो गए। भारतीय फिजाइया का विंग कमांडर दिफाई मालूमात अफशा करने के इल्जाम में गिरफ्तार। यमन की मुसल्ला अफवाज की हौसियों के खिलाफ फौजी कार्रवाइयां जारी। और UAE का चीन के साथ براہ راست بحری تجارتی روڈ شروع. تو یہ تو تھی اردو کی چند خاص ہیڈ لائنز. مزید اپڈیٹ جاننے کے لیے سنتے رہیے لائک ریڈیو گریٹر مانچسٹر.
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: Leica Radio کا سونے کا بھاؤ کا تازہ ترین ریٹ آج UK میں ہمارے یہاں 1 گرام گولڈ کی قیمت ہو گئی ہے 103.98 یعنی 103 پاؤنڈ 98 بینیاں اور پاکستانی روپیز میں 24 کیرٹ 1 گرام گولڈ کی قیمت آج ہے جی 38,500 روپے 38,500 روپیز.
1: گولڈ ریٹ از براٹ ٹو یو بائی ہارٹی ہینکس یو کے پریمیئر ڈیجیٹل میڈیا ایجنسی ہیلپنگ کمپنیز ایکسپینڈ دیئر ڈیجیٹل فٹ پرنٹ وزٹ hartyhanks.com.
2: ये है
3: Leica Radio.
4: Southall travel 7 days a week. Southall travel 24 hours a day. We're at our peak.
5: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
6: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
7: Southall Travel, at all protected.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
8: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
9: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
11: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
10: Atif Aslam brings his unforgettable sound
11: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
10: Denby Productions, supported by Rianne's Music.
11: Official radio partner, Leica Radio, Greater Manchester.
12: History divided a nation, but could never divide humanity. Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara, 1947. Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
13: Har bachche ke muh se nikla pehla lafz maa hai.
12: Produced by Amir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Releasing in cinemas on August the 14th.
14: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
15: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
14: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: اپنے کاروبار کو اکراس گریٹر مانچسٹر پہنچانا چاہتے ہیں تو اسے لائک ریڈیو مانچسٹر پر جو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے سینے میں دل بن کے دھڑکتا ہے ایڈورٹائز کر کے سینکڑوں لسنرز تک روزانہ پہنچائیے. لائک ریڈیو گریٹر مانچسٹر. ای میل sales@leicamedia.co.uk اور کال نمبر 0161250822. دیٹ از 0161250822. لائک ریڈیو گریٹر مانچسٹر, آپ کی کمیونٹی, آپ کا اسٹیشن.
1: A Leica Radio Classic plays now.

0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: और जनाब SBI वालों का पैगाम इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए तीन ज़राए देते हैं, तीन तरीके बताते हैं. ऑनलाइन या इनके किसी ब्रांच में जाके आप रकम पहुंचा सकते हैं या इनकी मोबाइल ऐप के जरिए योनो एसबीआई मोबाइल ऐप यूके. आज का रेट दे रहे हैं ये ब्रिटिश पाउंड के बदले में इंडियन रुपीज 127.08.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. टीज एंड सीज अप्लाई. Formerly known as Asian Sound Radio, this is Leica Radio, Greater Manchester. Leica Radio.
1: Right, Janab. Formerly named Asian Sound Radio. ये हमारा पुराना नाम था और अब है Leica Radio Greater Manchester, Leica Network, Leica London, Leica Leicester, Midland, and Manchester. 10 अगस्त हमारी डायरी के पन्ने पे कुछ नहीं लिखा लेकिन बहरहाल जी रफी साहब का ये गीत क्लासिक सॉन्ग शमीम बानो बेगानी हमारी बहन होती है उन्होंने ये फरमाइश की थी हमसे. इसी गीत को नाम करेंगे हम पुर्तगाल में लिस्बन में बहुत पसंद करते हैं बहुत बड़े मद्दा हैं उनके रफी साहब के नसीर भट्टी. इसी गाने को नाम करेंगे हम बैनले में नौशाद अली भाई आपके. गाना अच्छा हो सॉन्ग अच्छा हो शायरी अच्छी हो तो भला किसको अच्छा नहीं लगता. प्रेस्टन से लेके जनाब ब्लैकबर्न, ब्लैकबर्न से लेके लंदन, लंदन से मैनचेस्टर, मैनचेस्टर की फिजाओं में, सराउंडिंग भी स्टॉकपोर्ट में, आस्टन एंड लाइन में, ओल्डहम में, बरी में, रॉजडेल में, कहां हैं आप, कराची में या लाहौर में, नीदरलैंड में, यूरोप के किसी कंट्री में या हॉलीडे पे जा रहे हैं कहीं, तो जाइए जरा, गर्मियां हैं, छुट्टियों के दिन है, मजे कीजिए, हॉलीडे पे जाइए. लेकिन जहां भी जाइए ऑनलाइन आप हमें सुन सकते हैं लाइक रेडियो का. हाँ, कहीं भी 24 घंटे हफ्ते के सातों दिन अपने किसी भी पसंदीदा प्रेजेंटर्स का प्रोग्राम आप हमारी मोबाइल ऐप पे अगर डाउनलोड कर लेंगे तो लिसन बैक पे जाके भी आप सुन सकते हैं. तो बहरहाल जी रिडल के जवाब आने शुरू हो गए, कुछ देर के बाद बताता हूँ आपको.

0: पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग की तो क्या बात होती है, हमेशा आपको बताएं, मंडे का शो हो और थोड़े से जरा तरबिया नगमे हो तो अच्छा लगता है। तरबिया समझते हैं आप? तरबिया एक होते हैं अलमिया, एक होते हैं तरबिया। तरबिया का मतलब होता है खुशी के गीत और अलमिया गीतों का मतलब होता है अलमिया, यानी गम के और दुखों के गीत। और मेरी कोशिश होती है कि दुखों के गीत ना लगाएं तो बेहतर है। जिंदगी में वैसे ही परेशानियां उदासियां क्या कम हैं। कजोरी जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ हैं सेल्फर्ड में। और एक और गाना आपने हमें भेजा है, उसका लिंक रफी साहब का, देखते हैं थोड़ी सी देर में आपकी पसंद का भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। फिल्म का नाम बिल्कुल ठीक कहा फरीद भाई, फिल्म का नाम था मन की जीत, अदाकारा शबनम। वो क्या है आज का रिडल दोबारा दोहरा दूं, वो क्या है जो दिन में एक आता है, रात में दो बार आता है और साल में आता ही नहीं। तमाम शुक्रिया दोस्तों का। काशिफ अब्बासी भाई आज गाड़ी ठीक कराने मैकेनिक को देकर आए हैं और पैदल मुझे मोबाइल पे सुनते सुनते घर जा रहे हैं। इतनी दूर घर है आपका, आपकी वर्कशॉप से, वही बड़ी बात है। वैसे पैदल चलना अच्छा होता है सेहत के लिए काशिफ भाई। गुलाम अली भाई हमारे साथ हैं जी ब्लैकबन में ही। और बमदानी शकील भाई रोजाना होते हैं, खामोश लिसनर हैं, कभी कभी मैसेज करते हैं प्रेस्टन में। जाहिद अब्बास भाई होते हैं वहाँ पे, वल्ली भाई होते हैं, साजिदा सुमर होती हैं वहाँ पे। बरी में हमारे साथ हैं जी चंदा, अमन हमारे साथ हैं वहाँ पे, बहुत शुक्रिया अमन। ताहिर जावेद हमें सुन रहे हैं नेदरलैंड में। अबरार भाई वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। उमर वालेकुम अस्सलाम। और एजाज ने हमसे कहा कोई मुकद्दर का सिकंदर की फिल्म का गाना आप सुनना चाहेंगे, नेक्स्ट आवर में सुनवाएंगे आपको, नो प्रॉब्लम। इम्तियाज भाई, मुदस्सिर सज्जाद।
1: द नॉर्थ वेस्ट विद लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड द साउथ विद लाइका रेडियो ग्रेटर लंदन, वी आर योर लाइका रेडियो नेटवर्क।

0: summer on the Leica Radio Network.
1: सोनू निगम के अदा वाले गाने से मुझे एक और याद आ गया. अदा हमारे अब पाकिस्तान में एक बुजुर्ग शायर हुआ करते थे, अदा जाफरी. मगर इस गाने में तो कुछ और अदाएं हैं, कुछ और जलवे. सुनिएगा.

0: Radio.
1: Ya allí paro que no creo para ahora. Paro que ya está. Vais tren to hota hai vais tren ke kaam mein. आधा जाफरी की बातें याद आ गई हैं मेरे शेर शायरी, लेकिन बहरहाल तमाम साथियों का शुक्रिया। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बैक टू बैक दोनों गाने आपको यकीनन अच्छे लगे होंगे। कुछ पुराना वक्त, 90s के दौर का वक्त, उस जमाने के गीत और उस जमाने के सॉन्ग। वल्ला वही इकबाल भाई नेल्सन में हमारे साथ होते हैं और वहीं पे होते हैं खालिद महमूद भाई, उनके दोस्त होते हैं जमशेद भाई हमारे साथ स्टॉकफोर्ड में। और शमीम बानो बेगानी आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ हैं जी। सलीना जी, अचानक याद आ गई मुझे, अतीका जी का जब पैगाम आता है तो मुझे सलीना जी याद आती हैं। फरहान अली हमारे साथ हैं जी चोरले में। काशिफ भाई हैं हमारे साथ आशन द लाइन में। और कजूरी जी मुस्तकिल हमारे साथ सेल्फर्ड में, थैंक यू वेरी मच। अहमद हमारे साथ हैं जी अहमद गेटली में। मुदस्सिर सज्जाद भाई लाहौर में, ताबीर आप हमारा साथ निभा रही हैं। अशरफ भाई आथरटन में है। अशरफ भाई आपका गाना मैं मैडम नूरजहां का ढूंढ रहा हूं, अगर जैसे ही मिला तो मैं आपके लिए जरूर प्ले करूंगा। उमर भाई वालेकुम सलाम। हमीदा जी हमारे साथ है जी, हमीदा जी होती हैं लंदन में। लंदन में हमारे साथ होते हैं भला कौन, योगेश भाई।
0: ये है लाइका रेडियो।
2: Part of the show is brought to you by Dhurandhar.
3: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m.
4: From cuddles to intensive care, from school runs to sirens. For babies, young children and teens, illnesses like measles, meningitis and pneumonia can cause serious life-threatening complications and even be deadly. Making sure that your child is vaccinated is a safe and effective way to keep them happy and healthy. Keep them protected with the NHS vaccines offered to children. Search NHS GM Child Vax or contact your GP practice.
5: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल at all protected.
7: Location, location, location.
8: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
7: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
8: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
7: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
8: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
7: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
8: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
7: high appreciation
8: in Dubai.
9: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
10: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
9: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
10: Rich, authentic taste every single time.
9: Royal Chai, brewed for business.
10: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
11: Mom always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.
12: Hi, this is Johnny Abraham.
13: Hi, main hu Deepika Padukone.
14: Hi, this is Papon.
15: Hi, this is Ehsan from Shankar Ehsan Loy.
16: Hi, I'm Nadeem Saifi from the Nadeem Shravan Jodi.
17: Hi, Sankit Tiwari.
18: Hi, this is Salim.
19: Hi, this is Suleiman from Salim Suleiman. Keep listening to us.
2: A Laika Radio classic plays now.

0: भाई कमाल कर दिया था अभी तुमने, ये तो हैट्रिक हो गई। रफी साहब का एक और गीत, क्या करें जी। पहले शमी बानो बेगानी ने हमसे फरमाइश की थी आज रफी साहब का दिन है क्या भाई, फिर कजूरी जी ने हमसे कहा कि ये भी लगा के दिखाओ। तो बहुत शुक्रिया जी, आपकी पसंद है। और वाकई पुराने गीत क्लासिक सॉन्ग जितनी मर्तबा भी सुने लगता है कि सुने ही नहीं, बहुत दिनों से नहीं सुना ये गाना, ऐसा लगता है ना। फरीद भाई कराची से कह रहे हैं मेरी भी एक फरमाइश पूरी करो फिर। अच्छा जी भेजिए, आप भेजिए, आपकी फरमाइश भी पूरी करने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा जी, हमारे रिडल का जवाब, वो क्या है जो दिन में एक बार आता है, रात में दो बार आता है और साल में आता ही नहीं। तो बहुत सारे जवाब हमें मिले हैं मुख्तलिफ। किसी ने ख्वाब लिखा, किसी ने चांद लिखा, किसी ने रात लिखी, किसी ने दरिया लिखा, किसी ने आबशार लिखा, किसी ने झील लिखा। अली बट हमारे साथ है मैनचेस्टर में, आपने हमें जवाब भेजा। हमजा वालेकुम सलाम, जीते रहो। रिजवान जमट हमारे साथ है, आसिम ओल्डम में है, ओल्डम ही में हमारे साथ होती है बिल्कीज बहन और शिराज भाई ड्राइव कर रहे हैं। मजर भाई लीड्स में है और जाहिद है बोल्टन में। गजाल जबी और मलिका, आपका बहुत शुक्रिया। सायर नासिर, सायमा, जाहिद अब्बास भाई और हिरल जोशी जी हैं हमारे साथ। हिरल जी नमस्कार। खालिद लंगड़ियाल भाई और राहिम हमारे साथ होते हैं जी मैनचेस्टर में। आसिफ जावेद आपका शुक्रिया। अशरफ मुगल भाई, आप सबके जवाब मैंने नोट कर लिए हैं लेकिन अभी नहीं बताऊंगा कि सही जवाब क्या है।
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: जी करेंसी क्रिएट हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम 1 पाउंड की कीमत यूएस डॉलर में आज 1.34 इंडियन रुपीज में 128.66, पाकिस्तानी रुपीज में 375.46, बांग्लादेशी टका 168.33, श्रीलंकन रुपीज 452.49 और अफगानी रुपीज 88.12।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. The sun is out. And so are the summer hits on LIKA Radio. Greater Manchester.

0: Best Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: राइट जनाब, अब एक बार फिर से सोने का भाव आपको बता दें। 1 ग्राम गोल्ड की कीमत हमारे आज हो गई यूके में 103 pounds 98 pence, यानी 103 pounds 98 pence, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड का भाव आज है 38,500 rupees, 38,500 rupees।
0: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartihanks.com।
2: ये है लाइका रेडियो।
1: प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के पूरे आधे हिस्से के बाद एक लाइव रीड। डेमी प्रोडक्शन, क्या भला, डेमी प्रोडक्शन एंड रीज म्यूजिक प्रेजेंट आतिफ असलम इन लाइव बंचेस एट द एओ अरीना ऑन फ्राइडे 11th September। टिकट्स आर अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर, एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।

0: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: SBI वालों का पैगाम एक बार फिर से इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाने के लिए तीन तरीके देते हैं SBI वाले. ऑनलाइन या फिर इनके किसी ब्रांच में जाके आप रकम पहुंचा सकते हैं, या बेहतरीन तरीका ये खुद मशवरा देते हैं ऑनलाइन, या माफी चाहता हूँ इनकी मोबाइल ऐप के जरिए. यूनो SBI मोबाइल ऐप UK के जरिए आप रकम पहुंचा सकते हैं. आज के रेट दे रहे हैं ये इंडियन रुपीज में 127.08.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a radio.
1: जी हाँ जी, उनका ही तस्वीर है महफिल होके. महफिल होके राना आई. पता नहीं क्या कहा था फरीद भाई, आप ही बताइएगा. अशरफ भाई चस आ गई ना. फरीद भाई कहते हैं कराची से, यार क्या खा के आए हो मंडे का दिन है? नहीं भाई, मंडे का दिन बात ये है कि हफ्ते का पहला दिन पहला शो होता है और आप लोग जानते हैं कोई नई बात तो है नहीं. कोशिश होती है कि हफ्ते की इब्तदा अच्छी बातों से और अच्छे अच्छे गीत और भरपूर तवानाई के साथ शुरुआत की जाए. एम खान हमारे साथ हैं, घर से निकले हैं, काम शुरू किया. एम खान वालेकुम सलाम, खुश आमदीद. इम्तियाज भाई ने कहा मेरा नाम नहीं लिया. इम्तियाज भाई क्यों नहीं लेंगे भाई आपका नाम? इतने सारे मैसेजेस हैं, अब मैं धीरे धीरे देखता हूँ मैं, आपको पता है. अंजुम जमान वालेकुम सलाम. और सीमाब निकले हैं अपने फैमिली के साथ कहीं घूमने फिरने, ड्राइव करते हुए हमें गड्डी चलाते चलाते सुनेंगे. थैंक यू वेरी मच सीमाब. और रोबिन भाई उठ गए हैं न्यूयॉर्क में. रोबिन भाई गुड मॉर्निंग. और समीर मिर्ची वाला भी उठ गए हैं और हमें सुन रहे हैं. अच्छा भाई, किसने फरमाइश की थी मुझसे याद नहीं आ रहा कि मुकद्दर का सिकंदर गाना सुनने की फरमाइश की थी किसी ने? किसने की थी भाई, जरा जल्दी से मैसेज करो. कादिर खान का डायलॉग, उन्हीं के डायलॉग, उन्हीं के गीत. इस गाने का जो पहला शब्द है, इस शब्द पे पूरी फिल्म बनी है, आपको याद होगा. रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा.

0: Jamaica Radio.
1: जी नैनो वाले ने नीति मोहन की आवाज के गीत भी बहुत अच्छा लगा। जमशेद चौधरी भाई कहते हैं नाइस सॉन्ग था भाई। कहते हैं जी कि नैनो का सारा कसूर होता है। मोहन जी आपके रिडल का जवाब मिल गया। साजिदा सुमरो हमारी बहन आपका भी जवाब मिल गया। और गुलाम अली भाई कहते हैं वाह आज के सारे गीत बहुत अच्छे हैं ताबिश भाई। अच्छा आपने भी फरमाइश कर डाली है, देखते हैं चेक करते हैं जी, चेक करते हैं। रुखसाना अफजल जी का भी मैसेज आया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने लिख के भेजा कि जिंदगी होंठ पे बिखरी हुई, जिंदगी होंठ पे बिखरी हुई मुस्कुराहट से बहुत मुख्तलिफ है भाई। वाह बड़ी मानी खैज और बड़ी सच्ची बात लिखी आपने। हमारी बहन गजाला कहती है जिंदगी होंठ पे बिखरी हुई मुस्कुराहट से बहुत मुख्तलिफ है। रुखसाना अफजल फ्रॉम रोशदिल। एम खान ने तमाम साथियों दोस्तों को सलाम कहा और पंजाबी सॉन्ग की रिक्वेस्ट, हाँ जी जरूर लगाएंगे एक और पंजाबी सॉन्ग की। प्रोग्राम के नेक्स्ट आवर में गुंजाइश मौजूद है। और रोबिन भाई एक ऐसा सॉन्ग मैंने आपके लिए निकाला है, यकीन कीजिए बहुत पुराना, लेकिन आज भी सुनेंगे तो आप कहेंगे वाह। 1958 में लेके चलूंगा मैं आपको। फिल्म का नाम पता है क्या? 16 साल। और इसे गा रहे हैं हेमंत कुमार। Like a radio.

0: वाह जमाने भर का नकारा, न जाने किस पे आएगा,
1: न जाने किस पे आएगा।
0: बोलिए चेस आई है।
2: लाइक अ रेडियो।
0: राइट जनाब, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा भी समाप्त होने को है और अब आपसे मुलाकात होगी 12 बजे की खबरों के उस पार। बैक टू बैक दुकानें और फिर गजल।

0: Tasty Track of the Hour, brought to you by Coca Noodles.
1: Right, जनाब, ये जो लास्ट सॉन्ग हमने आपके लिए बड़ा ही शॉर्ट और छोटा सा लगाया था, मोरा फिल्म का पंकज उदास का, इसको सुन के जी नहीं भरा था ना मेरा और ना हमारी बहन शमी बानो बेगानी का। उन्होंने कहा ताबिश से दोबारा लगाओ पूरा का पूरा। Right, जनाब, जैसा आपका हुक्म। और इससे पहले का पहला सॉन्ग, चूंकि हमें कुछ बोलना नहीं था इस गाने में, लिहाजा वो उनके लिए था जिनकी हमारी लिस्टनर है, उनके साहबजादे की शादी अगले महीने, वो गाना उनके नाम हुआ।

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: Right, जनाब प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में एक बार फिर से आपको करेंसी अपडेट दे दें. यूएस डॉलर 1.34, इंडियन रुपीज में 128.66 रुपए, पाकिस्तानी रुपीज में 375.46 रुपए, बांग्लादेशी टका 168.33 रुपए, श्रीलंकन रुपीज 452.49 रुपए और अफगानी रुपीज 88.12 रुपए.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Formerly known as Asian Sound Radio. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: हाँ जी, हॉलीडे वालों का आपको साउथल वालों का पैगाम बता दें कि दुबई जाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल अगर आपकी हो गई हैं तो बेइंतहा ऑफर्स के साथ साथ आपको ये बहुत अच्छे टिकट बना के दे रहे हैं, लेकिन टर्म्स कंडीशंस अप्लाई होंगी. एट ऑल प्रोटेक्टेड है और नंबर इनका है 0208-574-8410.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. The Pakistani Hit of the Hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: राइट जनाब, कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे ना नैनो की, तो ये गीत मुझे पाकिस्तानी सॉन्ग याद आया, अमानत अली और मारिया मीर की आवाज का है। बहुत दिनों से ये सॉन्ग मैंने भी नहीं सुना था। अच्छा जी, आज का रिडल बहुत सारे दोस्तों को समझ में आ गया और बहुत सारी हमारी बहनों ने बिल्कुल सही जवाब दिए। मैंने पूछा था कि वो क्या है जो दिन में एक बार आता है, रात में दो बार आता है और साल में आता ही नहीं। मोइना जी ने हमें लीम में सुनती है, कहती है ताबिश भाई एक दफा फिर से रिडल मुझे आप पूछें बताएं तो मैं सोचती हूँ। इससे पहले जो आपने मुझे जवाब लिखा था वो लिखा था आपने लेटर, लेकिन नहीं, लेटर का मतलब होता है हर्फ, हुरूफ, हुरूफ अल्फाज, बल्कि ये जरा सा मुख्तलिफ होगा। अब्बास भाई हमारे साथ हैं। अब्बास, एक जाहिद अब्बास होते हैं प्रेस्टन में और एक सिर्फ अब्बास। और नसीर भट्टी ने हमें लिखा सुभान अल्लाह, भाई क्या वजह हो सकती है सुभान अल्लाह की। और बोल्टन में जाहिद है हमारे साथ, जाहिद आपने भी हमारे रिडल का जवाब लिख के भेजा। प्रेस्टनी में हमारे साथ हैं वल्ली भाई, वल्ली भाई ने सबको सलाम कहा है। और एक्रिंटन में पहलवान सज्जा, हमारी शुमायल बहन और अशफाक भाई, और रिजवान हमें सुन रहे हैं। रिजवान आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको सुनाएंगे सोने के भाव, कोई तब्दीली नहीं है, उसके बाद ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ।
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: हाँ जी, सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत है 103 pounds 98 pence और पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की आज कीमत है 38,500 रुपीस।
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio.
0: प्रोग्राम के थर्ड एंड फाइनल ओवर में आधे हिस्से के बाद एक लाइव रीड आपको पढ़ के सुनाना होती है। कौन कौन जानता है सुनील ग्रोवर को? सुनील ग्रोवर जो कि मशहूर हुए थे कपिल शर्मा शो से, आपको पता है कि सुनील आ रहे हैं, कैच द कमेटी जीनियस सुनील ग्रोवर लाइव इन लंदन 8AO AVO अरीना वेम्बली, और थर्सडे को 29 अक्टूबर को ये जाएंगे लेस्टर में मिटोली अरीना में, ये लेस्टर में जो है परफॉर्म करेंगे 31 अक्टूबर को। टिकट के लिए एट कहते हैं कि AXS पे जाइए, इवन ब्राइट और टिकट मास्टर पे। आपको बता दें कि ये एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है हमारे लाइका रेडियो नेटवर्क के।
2: ये है लाइका रेडियो।
3: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th, आज ही तशरीफ लाइए, 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
4: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
5: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
4: So where do we find something like that now?
5: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made it the way our eldest used it.
6: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
7: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to try. trade. Visit heraldplastic.com.
8: Hey, friends ke saath weekend party ho ya khud ke saath Netflix and chill. A desi tadka is total risk, hai na?
9: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
8: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
10: Dard se purana rishta hai mera.
11: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2.
10: Usse mujhe chua.
11: Releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
7: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lionecroft.
12: Cutthroat Ke Khiladi.
1: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Advertise your service here. 01612508222. Leica Radio, Greater Manchester. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: राइट जनाब, इस सॉन्ग को लगाने का कारण ये था कि इस हफ्ते के आर्टिस्ट ऑफ द वीक हमारे हैं इमरान हाशमी, इस हफ्ते के आर्टिस्ट ऑफ द वीक थे, पूरे हफ्ते रहेंगे, लिहाजा ये सॉन्ग हमने आज के
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: राइट जनाब, SBI वालों का पैगाम, इंडिया अपने प्यारों को रकम पहुंचाएं और आज का रेट दे रहे हैं ये ब्रिटिश पाउंड के बदले में इंडियन रुपीज 127.08 रुपए.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. We are Leica Radio.
2: Leica Radio.
1: Greater Manchester. The Pakistani hit of the hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: Right, Janab, aaj socha ke chalein. पाकिस्तानी क्लासिक सॉन्ग में एक बार फिर से आपको मैडम नूर जहां का पंजाबी सॉन्ग सुनवाते हैं. जरा एक फिल्म थी पाकिस्तानी, बड़ी खतरनाक फिल्म थी साहब, फिल्म का नाम भी था खतरनाक.

0: ये है
1: लाइका रेडियो।
2: इस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय 108 बेस हॉस्पिटल उरी। स्टार्ट्स 15th ऑफ अगस्त एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7 PM ऑन कलर्स टीवी।
3: आई होप मेजर नैना हम लोग वक्त पर पहुंचे।
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
5: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
4: High appreciation.
5: In Dubai.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410। साउथ हॉल ट्रेवल. Auto protected.

0: फिर नहीं आते वो रिश्ते जिन रिश्तों की इंसान कदर नहीं करता है, वो बाद में बहुत पछताते हैं। नजर आपको मेरा मकसद उदास करना नहीं था, वक्त की किल्लत और मेरा प्रोग्राम समाप्त होता है। आज के हमारे रिडल का जवाब था नुक्ता, जो दिन में एक बार आता है और रात में दो बार और साल में नहीं आता।
1: Rolling out your favorite hits across the northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester.
0: Khuda hafiz, fi amanillah, khuda paman. See you tomorrow, inshallah.

0: तारिक हलाल। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com।
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: अल्ताफ राजा की आवाज अभी आप सुन रहे हैं। द मैगजीन शो आपके लिए पेश किया जा रहा है और हमारा और आपका साथ शुरू हो चुका है। बहुत से गीत आपके लिए होंगे और फुली जैम पैक प्रोग्राम होगा, आई प्रॉमिस। लेकिन अभी के लिए चलते हैं एक यानी बिजनेस की तरफ और वो है करेंसी एक्सचेंज रेट। सो चंद लम्हात में वापस आऊंगी और बहुत ही जबरदस्ती बातें हैं, स्टोरी है।
1: करेंसी अपडेट्स स्पॉन्सर्ड बाय लेमफाइ मोबाइल ऐप। सेंड मनी टू इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश स्विफ्टली फ्रॉम योर फोन।
0: सो आज वन पाउंड का एक्सचेंज रेट यूएस डॉलर में 1.34 डॉलर्स है, इंडियन रुपीज 128.66, पाकिस्तानी रुपीज 375.46, बांग्लादेशी टकर 168.33, श्रीलंकन रुपीज 452.49, अफगानी 88.12, अफगानीज।
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. The new Asian sound for the Northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester.
2: Leica Radio.
1: A Leica Radio classic. Plays now.

0: Lighter Magazine Show with Robina Khan. Lighter Radio.
1: और जी हाँ, लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर की आवाज अब तक पहुंच रही है। मैं हूँ रुबीना खान और आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा मंडे के प्रोग्राम में कम रुबीना बात कर रही है, तो चलिए मैं इसको रिवील कर देती हूँ। आज जहाँ मैं काम कर रही हूँ, जब मैं काम करती हूँ तो हमारे इंजीनियर्स जो हमारे स्टूडियोज में हैं वो काम छोड़ देते हैं, वो हाथ पे हाथ रख के बैठ जाते हैं, और जब वो काम करते हैं तो मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ जाती हूँ। तो कुछ थोड़ा सा ये आपको मिलेगा सुनने को, इस तरह के वक्फे के बड़े गीत मैं अच्छे आपके लिए लगाऊंगी, लेकिन ये जो हाथ पे हाथ धरने की बात है ये आज होगी जब तक के काम नहीं हो जाता। सो बिल्कुल भी आप ये ना समझिएगा कि आज ऐसा ही चलेगा और कोई है नहीं यहाँ पर, सभी लोग यहाँ पर हैं। और सिर्फ जाने से पहले मैं ये बता दूं, यानी कि नेक्स्ट सॉन्ग की तरफ जाने से पहले, वो ये है कि आज लेजी डे है 10th ऑफ अगस्त को। आप भला सोचिए, लेजी डे आप अफोर्ड कर सकते हैं लेजी होना? काम छोड़ सकते हैं? मैं इंजीनियर साहिबान को कहूं कि काम छोड़ दे भाई, बीचों बीच छोड़ दे, नहीं हो सकता। मैं शो छोड़ के चली जाऊं, नहीं हो सकता। ये लेजी डे क्यों रखा है? हाँ, अलबत्ता ये जरूर हो सकता है माय डियर लिसनर्स के, ये जरूर हो सकता है कि मैं ये कहूं कि आज आप मुझे ये बताइए कि लोग किसी ना किसी तरह आपकी तारीफ तो करते होंगे ना, तो आपकी सबसे ज्यादा तारीफ क्या होती है जब आप किसी से मिलते हैं? आपके फ्रेंड्स, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, कम्युनिटी में मूवमेंट के दौरान आपकी तारीफ किस चीज पर ज्यादा होती है? आप वॉइस नोट सेंड करें बड़े प्यारे प्यारे से, उनको मैं प्ले भी करूंगी, और इधर मैं आपको गीत और वगैरह ये जो चल रहा है काम, इसकी मैंने आपको डिस्क्लोज तो कर ही दिया। तो अभी मैं गोल्ड रेट बताऊंगी और उसके बाद आती हूँ चंद लम्हात में वापस।
0: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: आज का गोल्ड रेट है 103 यानी 103 pounds 98 pence, 1 gram गोल्ड का ये रेट है।
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.

0: Strikes Midnight come. Join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family. Radio partner, Leica Radio.
1: Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic Vada Pav, now in Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, has opened its newest stall at R1, Hale Place, Manchester, Arndale M43AB. Be among the first to taste the authentic flavours of Mumbai. SKVP Vada Pav, we'll see you there.
2: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
3: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
3: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
3: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
4: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
5: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.

0: उर्दू पंजाबी मिक्स गीत आप सुन रहे थे, पाकिस्तानी सॉन्ग था ये, जेबी खान की आवाज और फिल्म का नाम था परे हट लव। अभी प्रोग्राम में कुछ ही देर पहले मैंने बात की और आपको जैसे होता है ना बैक स्टेज पे क्या चल रहा है, इस तरह स्टूडियो में क्या चल रहा है वो मैंने आपको बता दिया। सीधी बात है कि बजाय इसके कि आप बेचारे जहन में सोचें कि क्या हो रहा है, मैगजीन शो में तो बहुत सी बातें होती हैं, तो अभी जो इंजीनियर साहिबान थे उन्होंने 10 मिनट्स की रुख्सत ली, लेकिन अभी जो मैंने कहा आपको कि आप ये बताइए कि आपकी लोग तारीफ करते हैं तो आपकी ज्यादातर किस चीज की तारीफ होती है, ठीक है? तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि वॉइस नोट छोड़िए कि आपको ज्यादातर अप्रिशिएट किया जाता है तो किस बात पे किया जाता है। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे देती हूँ कि जब आप कहीं जा रहे हैं, आप अच्छे लग रहे हैं, आपकी तारीफ होती है, यू आर लुकिंग वेरी नाइस। आपने कोई बात की या मतलब तारीफ बताएं, मैं क्यों डिस्क्लोज करूं कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे जैसे होता है ना जब आप थिएटर में सुनते हैं, काम करते हैं या स्टेज पर होते हैं तो आपको फौरी रिएक्शन आता है, तो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं इंजीनियर साहिबान उन्होंने मेरी उर्दू समझ ली और वो जब मैंने उनको वक्फा करवाया कहा, हमसे हाथ पे हाथ धरने को कहा, तो उन्होंने कहा जो आपने अभी लोगों से पूछा है तो मैं ये कहता हूँ कि यू आर वेरी क्लेवर। तो मेरी तो तारीफ हो गई फौरी के फौरी। आप बताइए आपको लोग क्या कहते हैं। मेरे पास तो आज ऑडियंस मौजूद थे और वो भी काम के ऑडियंस के काम भी कर रहे हैं और फीडबैक भी दे रहे हैं, प्रोग्राम भी सुन रहे हैं ऑल टुगेदर। आपकी क्या तारीफ होती है, वॉइस नोट सेंड कीजिए 07703403020 पर। क्या लोग कहते हैं आपको ये बताइए मुझे।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: तो इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आपको आज 1 पाउंड के एक्सचेंज में इंडियन रुपीस मिलेंगे 128.66 एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: 20 8574 8410. That's 8574 8410. Safo Travel, auto protected.
1: Location, location, location.
2: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
1: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
2: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
1: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
2: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
1: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
2: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
1: high appreciation
2: in Dubai.
3: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है। अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है। बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल हैं। NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें।
4: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन July 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
5: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
6: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
7: We're not having that, are we?
6: No. Oi, you lot, eat water and cans.
8: And fix those drips and drops.
9: And take shorter showers, yeah?
10: Because when we work together, it all adds up.
11: So come on, you lot, search Let's Save water.
12: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
13: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2. Releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
0: News headlines up next. Leica Radio, Greater Manchester.
14: Hi, मैं हूँ अश्विनी। हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइक अबोल रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी। फीचर्स बड़े ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग आप सभी के लिए।

0: राधा भुजवाल और उदित नारायण की आवाजें कितनी ही सुरीली है, क्या कहें, क्या तारीफ करें। लेकिन अब जो गीत सुनेंगे वो उनके बारे में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं कह सकते ना। लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाजों में नेक्स्ट सॉन्ग है जो हमें 2 बजे तक ले जाएगा।
1: The biggest Asian hits in Greater London and now Greater Manchester. This is your Leica Radio.

चौहान की आवाज अभी आप सुन रहे हैं। ऐसे गाने गाती नहीं वो, वो गाती है कैसा जादू डाला रे, पूरी एनर्जी वाले गाने। लेकिन ये गीत कितना ही सुरीला है और कितना प्यारा गाया है। The Magazine Show with Rabina Khan. Like a Radio. So, Like a Radio और प्रोग्राम का पहले गीत के बारे में भी बता दूं आपको। लापता गीत का नाम था पलक मुचाल, एनके की आवाजें थी और फिल्म का नाम था एक था टाइगर, 2012 की फिल्म थी। आपके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आपको लोग आपकी किस खूबी की तारीफ करते हैं नॉर्मली, तो आपने वो बतानी है। अभी कुछ मैसेज मिले हैं लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आपके सवाल मुश्किल होते हैं, यानी इससे आसान बात क्या हो सकती है लाइफ में। आपको बाजुकात यह हो सकता है आप ठीक हो, आई एम रॉन्ग, ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि जब आप कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। जैसे कहते हैं ना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट, लिसनर्स भी हमेशा सही होते हैं, क्योंकि जो चीज बाजुकात बहुत आसान लगती है वो उतनी ही मुश्किल होती है कहने के लिए और समझने के लिए। तो मेरा आज आपसे ये कहना है कि मुझे वॉइस नोट जो चाहिए आपकी तरफ से वो ये है कि आपकी कौन सी खूबी है जिसकी लोग ज्यादा तारीफ करते हैं, आपको क्या कहते हैं, आपको और कितना अच्छा लगता है, ये भी अगर कहना चाहें बताना चाहें तो जरूर। और यहाँ पर ये मैं एक लफ्ज को अंडरलाइन करती हूँ कि आपकी कौन सी ऐसी खूबी है जिसकी लोग तारीफ करते हैं। और इसके साथ ही आपको ये बता दूं कि नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो सुनने में आया है कि टेस्टी है।

0: Magazine Show with Robina Khan. Like a Radio.
1: जी जोगी आप सुन रहे थे ब्यूटीफुल ट्रैक आपके लिए प्ले किया गया. आपके मैसेजेस जो हैं जरा शामिल कर लें. आपसे सवाल पूछा, आपने जवाब दिया और आपने जवाब लिख कर दिया तो आधी बात मानी आधी नहीं मानी, ये कुछ अच्छी बात तो है नहीं. लेकिन मैं ये सोच सकती हूँ कि आप लोग बिजी हैं, काम का वक्त है, लिहाजा मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ. और इट्स ओके टू राइट डाउन. ठीक है, आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं. आपकी कौन सी ऐसी खूबी है जिस पर लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं. तो जी बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ. कोई ना, आपने लिखा है कि माय फ्रेंडलीनेस इज लाइक बाय मोस्ट, आपकी जो आप दोस्ताना आप मतलब आई मीन यूर फ्रेंड, सीधी बात है तो आपकी बड़ी बड़ी बात है. ये तो बाज लोग नखरे बहुत करते हैं, बाज लोग बहुत नखरे करते हैं और ये बहुत ही अच्छी आदत है कि फ्रेंडली होना. वैसे दिल बंदा जीत लेता है. फिरजाना आपने मैसेज किया, आपने लिखा ही नहीं. वैसे आप ऐसा करती तो नहीं है. अभी मैं और मैसेजेस की तरफ चल रही हूँ, क्विकली पढ़ लेती हूँ. और नसीर अहमद भट्टी, एन खान, एस जी, एस पी सजाद, एन खान, जे चौधरी, पोइना एंड और मैसेजेस तो बहुत है. लेट मी जस्ट फाइंड आउट. ओके, इतनी देर ऐसा करते हैं कि करेंसी रेट और ये सब चीजें कर लें, फिर आपसे आपके मैसेजेस, कुछ वॉइस नोट भी हैं. वॉइस नोट के लिए मैंने आज खास तौर पे क्लैपिंग करनी है, क्योंकि जो लोग पूरी बात मान रहे हैं उनके लिए कोई तो एडिशनल एप्रिसिएशन होनी चाहिए ना, तो मैं तो करूंगी फिर आज ये.
0: लाइक अ रेडियो, ये है लाइक अ रेडियो. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So, the currency exchange rate, aaj US dollar aapko 1 pound ke exchange mein milega 1.34 US dollars, Indian rupees 128.66, Pakistani rupees 375.46, Bangladeshi takas 168.33, Sri Lankan rupees 452.49, Afghani 88.12. Afghanis.
0: Laika Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply. Laika Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. A Laika Radio Classic plays now.
1: मोहम्मद रफी की आवाज सुनते हैं. फिल्म का नाम है आदमी. थोड़ा थोड़ा ब्रेक ब्रेक ब्रेक, हार्ट ब्रेकिंग आज पुरानी राहों से.

0: म्यूजिक कंपोजर का कमाल, गाने का कमाल और लिखने वाले का कमाल. All together.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. Leica Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: आज का gold rate है 1 gram gold का ये price है 103.98 pounds.
1: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: Like a radio.
3: Yeah.
4: Like a radio.
1: This is Leica Radio, Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio.
2: Leica Radio.
1: पॉडकास्ट
0: अपडेट. जी, नई पॉडकास्ट रिलीज हुई है और लाइका एक्स्ट्रा न्यू पॉडकास्ट का टाइटल है इज एस्ट्रोलॉजी रियल और आर ट्रैप. ये तो बिग क्वेश्चन है, बहुत से लोग तो इस पे बहुत यकीन रखते हैं. और दिस एपिसोड और पॉडकास्ट इज होस्टेड बाय खुश. सो ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होगी. और आपको ये बता देती हूँ मैं कि लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है इन ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजोन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Leica Radio.
5: Ready UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night. Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions. Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS. For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner Leica Radio Network.
6: मैंने ना function रखा हुआ है.
7: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह. बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे. तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी. साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा, शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें. ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th. आज ही तशरीफ लाइए. 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG. तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट. हर वक्त हर जायके के लिए.
8: You know that clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
9: After the smash hit run in 2025, Surinderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungala and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic Panto tale on its head and give it an exciting dizzy twist. Touring to the Palace Theatre, Manchester, Friday the 4th of September to Saturday the 5th of September. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surinderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surinderella, panto fun for all the family.
10: रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो.
11: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
12: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
13: यू मीन सफल ट्रेवल?
12: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
13: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल.
12: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
13: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
14: कॉल सफल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week on 01612501250. That's 01612501250.
15: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton, with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
3: बवाल बॉस के ऊपर जाएगा भाई।
4: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है।
16: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो।
17: निकाल माइक।
18: भाई माई के पिया कितना सुंदर।
19: The brand new reality TV show Bhojpuri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
1: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
20: Hi, this is Akshay Kumar.
21: Hi, this is Akshay Kumar.
20: And you're listening to Like a Radio.
22: मैं हूं इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक।
0: Sujee, South Hall Travel is pleased to announce that the FCDO has lifted its advice against all but essential travel to Dubai. Call South Hall Travel for the most competitive Dubai deal on 0208-574-8410. It will protect it.
1: Holiday breaks were brought to you by South Hall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. 90-

0: ऐसी वजह से आपकी तारीफ होती है, तो तारीफ तो फिर भाई भतीजे के बच्चे करते होंगे ना। अपने बच्चों को फॉर ग्रांटेड बंदा ले सकता है ना, ऐसी बात ही है। सो एनीवे, सुफियान आपने कहा है कि आपकी फिटनेस की लोग तारीफ करते हैं, फिर तो आप बहुत मेहनत करते होंगे ना ये। सो फिटनेस में ही मुक्ति है जी। समीना मैनचेस्टर से आपने कहा है कि ये जो आपने बिल्कुल सही कहा है जी, मेरी कोशिश होती है सही कहने की। आपने कहा कि पुरसकून नींद आती कैसे है, वो 111 साल का खातून, उन्होंने कहा मेरी लंबी जिंदगी का राज यही है। चलिए जी, सन्नू की, अब मैं ये देखती हूँ कि ये गीत नहीं, ये वॉइस नोट प्ले होता है, आप तक आवाज जाती है तो ठीक है, और नहीं जाती तो मैं इसको किसी और तरीके से भी जरूर प्ले कर सकती हूँ। लेट मी ट्राई वंस।
1: अस्सलाम वालेकुम मीना खान, कैसी हैं आप? आपके सवाल थोड़े मुश्किल होते हैं, जैसे पहलवानों वाले दाव लगाती हैं आप। घर से जब तैयार होकर जाएं तब घर वाले थोड़ी तारीफ कर देते हैं कि आप अच्छे लग रहे हैं, या फिर उनको कहा जाए कि बाहर खाना खाने जाएंगे आज, या किसी को कोई अच्छा गिफ्ट दे दो
0: तो तारीफ होती है। अच्छा ये बात है, तो फिर ये तो खाने की तारीफ हुई और गिफ्ट की तारीफ हुई, आपकी जाती तारीफ तो इसमें नहीं शामिल है। चलिए कोई बात नहीं, बहरहाल आपके लिए बहुत सी क्लैपिंग्स जो के होनी तो चाहिए ही, क्योंकि आपने वॉइस नोट किया है, आपके लिए सारी क्लैपिंग्स। खुश रहिए जी।
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So, ji, आप अगर money send करना चाहते हैं India तो 128 आपको pound मिलेंगे 1 pound के exchange में, और आपको quickly याद दिला दूं कि आप exchange कर सकते हैं money in branch, online और SBI Yono mobile app. T's and C's apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
3: Like a radio.
4: This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 50th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
5: I hope Major Nena hum log waqt par pahunche.
6: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes and creating world-class cuisines, and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
7: Have you tried Mumbai's favorite street food? Meet the iconic Vada Pav, now in Manchester. SKVP Vada Pav, one of the UK's fastest growing Indian street food brands, has opened its newest store at R1 Hale Place, Manchester, Arndale M43AB. Be among the first to taste the authentic flavors of Mumbai. SKVP Vada Pav, we'll see you there. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala. Heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
8: Location, location, location.
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
8: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
9: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
8: high appreciation
9: in Dubai.
10: The voice that turned love heart.

0: लता मंगेशकर की आवाज 1962 की फिल्म से, क्या ही अच्छा ट्रैक है।
1: Rabina Khan, now every Monday to Thursday at 1 PM on Leica Radio Greater Manchester. Short heart-touching stories with Rabina Khan.
0: So, आज की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत ही पसंद आई। जो भी कहानियां यूनानी ग्रीक मिथ से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं, उनमें विजडम भी होता है और एक तरह की ब्यूटी भी होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछले दिनों शमा और परवाने की बात बताई थी, मक्खी और परवाने की बात थी, या फिर जो अभी हमने नार्सिसिज्म पर बात की, वो भी एक ग्रीक ही एक्सट्रैक्ट था मिथ से। आज की कहानी भी वही है, मतलब वही का मतलब रिपीट नहीं है, लेकिन मिथ है, यूनानी मिथ से इसको हमने एक्सट्रैक्ट किया है और इसका नाम है मोम के पर, या जो वैक्स होता है, वैक्स विंग। सो बात शुरू होती है बादशाह से। बादशाह था पुराने जमाने का और वो बड़ा कारीगर था और बहुत उसके जो रियाया थी वो भी बहुत ही अच्छी थी। उन तमाम बड़े अच्छे कारीगरों में बादशाह को एक कारीगर जो कि बड़ा एक्सपर्ट था अपने काम का, बहुत सी चीजें ऐसे बनाता था कि लोग देखते रह जाते थे, लेकिन बादशाह को संभव वो नापसंद था। और जब कोई चीज बादशाह को नापसंद होती है तो उसके पास पावर होती है, वो उसको उसने क्या किया कि उसको निकाल बाहर किया और किसी ऐसे आइलैंड में, जजीरे में, या कोई ऐसी भूल भुलैयों वाले माहौल या महल में, अब उसमें उसको कैद कर दिया। कहानियों में जो थोड़ा बहुत फर्क होता है, वो मेन चीज वहीं की वहीं होती है, लेकिन थोड़ा सा मतलब एक आइलैंड की बजाय एक बहुत बड़ा महल रख देंगे जहां से वो बाहर नहीं निकल सकता था, इतनी ही चेंजेस होती हैं, बाकी सब स्टोरी लाइन एक ही होती है। तो बादशाह का नाम मायोनियस था और हुक्मरान था, ये जो स्टोइक या ग्रीक लोग हैं इनके नाम बड़े डिफरेंट से होते हैं। और जिस कारीगर का मैं नाम लूंगी वो डेडलिस था उसका नाम, और जो उसका बेटा था एक्रिलिस, ये दो लोगों को बादशाह मायोनियस ने अपने मुल्क से निकालकर कहीं पर कैद कर दिया। अब वो चूंकि कारीगर बंदा था, उसको तो कुछ ना कुछ करना था अपनी रिहाई के लिए, तो डेडलिस ने सोचा कि अगर जमीनी रास्ते से मैं बाहर नहीं निकल सकता, समंदर मेरे लिए बंद है, तो हम आसमान से जाएंगे। उसने क्या किया कि उस जजीरे पे या महल पर जो परिंदे आते थे उनके पर जमा करने शुरू किए, जो परिंदों के पर गिर जाते हैं उनको जमा किया, उनको जो बीज होती हैं उनके वैक्स से, मोम से, उन परिंदों से दो पर अपने लिए, बिग पर जो है, विंग्स जो है उसने तैयार किए, एक अपने लिए और एक अपने बेटे के लिए तैयार किए। सो अब उसने जब ये दो चीजें तैयार हो गई तो उसने अपने बेटे जो उसका नाम था एक्रिलिस, उसको कहा कि देखो ये परिंदा, ये जो जोड़ी है परियों की, ये तुम्हारी है, ये मेरी है, लेकिन मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि ना बहुत नीचे उड़ना, यानी समंदर के बिल्कुल ऊपर ना उड़ना, थोड़ा सा फासले से उड़ना, वरना जो समंदर की नमी है वो तुम्हारे परों को हैवी कर देगी और तुम समंदर में गिर जाओगे, और ना ही बहुत ऊंचा उड़ना, क्योंकि सूरज की गर्मी से तुम्हारे परों पे जो मोम लगी है वो गिर जाएगी और पिघल जाएगी और तुम फिर नीचे जमीन पर आ रहोगे। तो दरमियानी रास्ता इख्तियार करना, बीच का रास्ता इख्तियार करना। अब दोनों ने पर बांध लिए अपने अपने शोल्डर्स पे और उड़ना शुरू हो गए, आसमान की तरफ उड़ते जा रहे थे। बहुत मजा आ रहा था, ऐसा लग रहा था वो परिंदे हैं और खूब मजे से वो उड़ रहे थे। अब जो कारीगर था या जो डेडलिस था, उसको तो पता था मैंने किस ऊंचाई पे उड़ना है, लेकिन बेटा जवान था और उसको, उसने सोचा कि मैं तो ठीक हूं, मैं उड़ता चला जाऊं, बड़ा मजा आ रहा है और मैं, सूरज जो है वो बहुत दूर नहीं है मुझसे, और उस जमाने में शायद सूरज की पूजा भी की जाती होगी, तो उसने कहा मैं उसको छू लूंगा, मैं तो हेवन में जाऊंगा। तो क्या हुआ कि जो ही वो सूरज या गर्मी के करीब पहुंचा तो उसके पर जो है वो पिघल कर नीचे गिर गए और वो खुद जमीन पर आ गया। अब इस स्टोरी का ये है कि इस पे आप बहुत से मॉरल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी की कितनी बाउंड्रीज हैं, किसी की नसीहत पर अमल करना कितना जरूरी है, आजादी आपको कितनी चाहिए, ये तमाम चीजें हैं जो इस कहानी से आप समझ सकते हैं। और इसमें एक और चीज भी है कि जितना आप गुरूर करते हैं, जिद करते हैं, वो इंसान को मार देती है, और नसीहत या दरमियानी रास्ता अच्छा है। सो जी, आजादी अच्छी है मगर जिम्मेदारी के साथ। इसी नोट पर इस कहानी को यहां खत्म करते हैं। मैडम, मैडम नूर जहां की आवाज गुलाम अब्बास उनके साथ हैं और क्या चाहिए.
1: द पाकिस्तानी हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय द लाइका रेडियो मोबाइल ऐप. लिसन लाइव एंड लिसन बैक टू योर फेवरेट शोज.

0: latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: एक बार फिर नोट कर लीजिए, आज 1 ग्राम गोल्ड की प्राइस है 103.98.
0: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट. विजिट hartyhanks.com. ये है लाइका रेडियो.
1: और इस वक्त मैं आपको एक पैगाम देना चाहती हूँ. मैसेज बहुत ज़रूरी है और ये है उदित नारायण आदित्य नारायण नारायण लाइव शो के बारे में. 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट ओवीओ अरीना विम्बले ऑन संडे 20th December. टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क. एक और बहुत ज़बरदस्त अनाउंसमेंट है आपके लिए, सुनील ग्रोवर लाइव. What a fantastic event it will be. Catch the comedy genius Sunil Grover live in London at OVO Arena, Wembley on Thursday, 29th October, and Leicester at Metalli Arena on Saturday, 31st October. Tickets at AXS, Eventbrite, and Ticketmaster. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
0: The Magazine Show with Robina Khan.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything, and this one is a villa.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: History divided a nation but could never divide humanity.
5: Kaun si azadi aur kiska mulk?
4: Witness the epic reunion of Sunny Deol and Rajkumar Santoshi in Batwara 1947.
6: Wo maa hai maa. Maa ko Hindu Musalman mein na baatiye.
4: Starring Shabana Azmi, Priti Zinta, Karan Deol and Ali Fazal.
6: Har bachche ke muh se nikla pehla lafz maa hai.
4: Produced by Amir Khan. Experience the untold story of courage and hope. Batwara 1947. Releasing in cinemas on August the 14th.
7: कडल से लेकर हॉस्पिटल तक, स्कूल रन से लेकर एम्बुलेंस की सायरन तक, बेबीज, छोटे बच्चे और टीन्स में मीजल्स, मेनिंजाइटिस और न्यूमोनिया जैसी बीमारियां बहुत सीरियस हो सकती हैं और जान को खतरा हो सकता है. अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाना उन्हें सेहतमंद और महफूज रखने का सेफ तरीका है. बच्चों के लिए NHS वैक्सीन अवेलेबल है. NHS GM चाइल्ड वैक्स सर्च करें या अपने GP प्रैक्टिस से राब्ता करें.
8: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
9: Hold on, miss. 2055, we'll be grown-ups by then.
10: We're not having that, are we?
9: No. Oi, hear that? It's water and cannons.
11: And fix those drips and drops.
12: And take shorter showers, yeah?
13: Because when we work together,
14: it all adds up.
15: So come on, you lot. Search Let's Save water.
16: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
17: When it comes to heart attacks, you might be surprised to hear the symptoms don't always feel severe. You could experience a squeezing across the chest, a feeling of unease, a sense something's not quite right. Don't be tempted to dismiss the signs and wait to see what happens. The faster you seek medical help, the better your chances. It's never too early to call 999 and describe your symptoms. Your NHS is here for you.
18: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल. एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ. सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे.
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: उसी फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक है, फिल्म का नाम हक। और ए दोस्त, हमने तरके मोहब्बत के बावजूद महसूस की है तेरी जरूरत कभी कभी, और जमाने भर के गम या एक तेरा गम, ये गम ना होगा तो कितने गम ना होंगे। और ऐसे शेर जो कि आपके दिल को थोड़ा थोड़ा दो टुकड़े करते हैं, और जैसा कि इमोजी होती है बिल्कुल उसी तरह दो टुकड़े करते हैं, और ऐसे शेर हर शायर ने ही कहे हैं, जिसमें अहमद फराज क्यों नहीं लिखेंगे, ऐसे जॉन एलिया का कोई शेर ऐसा क्यों नहीं होगा, बिल्कुल बहुत ही दिल गिरफ्ता, जख्मी जख्मी ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहाँ में क्या, और रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। आपको अभी जो गीत सुनाया आर्टिस्ट ऑफ द वीक हमारे आज के इस वीक के इमरान हाशमी हैं, जिन्होंने बहुत ही बोल्ड और डिफरेंट जॉनर्स में काम किया है, लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना एक बहुत ही अच्छी फिल्म, अगर नहीं देखी तो जरूर देख सकते हैं आप, हक फिल्म से इस गीत को हमने लिया। और दूसरी तरफ जो मैसेजेस का सिलसिला है वो अभी चल रहा है, मैं वजाहत हाशमी आपका मैसेज मिला, आपको अच्छा लगा शो, शुक्रिया बहुत बहुत, और क्या चाहिए जी, हमने मेहनत की और आपको कुछ पसंद आ गया, ढेर मेहरबानी। और इसके बाद नसीर अहमद, आपके भी बहुत से मैसेज हैं, आपने जब पुल की बात की थी तो शादरे का पुल आपको याद आ गया, ऐसे तो होता है किसी चीज से कोई दूसरी चीज याद आती है। मोहम्मद अयूब, आपका मैसेज है, और आपने बड़ी अच्छी गेम खेली है, आपने कहा कि लोग मेरी तारीफ कोई नहीं करते, और अगर तारीफ करते हैं तो सिर्फ मेरे गानों की तारीफ करते हैं, देखिए ना हाउ क्लेवर यू आर। और आपने साथ ही द गाना जो है ना वो मुझसे रिक्वेस्ट कर दिया, मुझे अफसोस है आज नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अयूब भाई कि मैं कल आपके लिए इस गीत को प्ले करूं जो आपने रिक्वेस्ट किया है। रुखसाना अफजल उर्फ पकीसा, आप अभी कोई मैसेज लिख रही है, लिखती रहिए, लेकिन चलिए आपकी मेहरबानी। और अब ब्रेक का टाइम है, लिटिल स्मॉल बिल्कुल ब्रेक है, उसके बाद मिलते हैं।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So, अगर आप इंडिया मनी सेंड करना चाहते हैं तो आज वन पाउंड आपको देगा 128.66 इंडियन रुपीस। और आप याद रख सकते हैं कि एक्सचेंज करना हो तो ब्रांच में ऑनलाइन या SBI योनो मोबाइल ऐप के जरिए मनी सेंड की जा सकती है। टीज एंड सीज अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
3: I hope me janena hum log waqt par pahunche.
4: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
5: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
4: So where do we find something like that now?
5: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil, Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made it the way our eldest used it.
6: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
7: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
8: लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन।
9: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
8: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
9: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
8: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
9: Step outside and enjoy

0: बाहों में बाह डाले हजारों में ले चलू।
1: तो मेरा जहन, आप सुन रही है हमें, बहुत से लोग झूम रहे हैं सराउंडिंग एरियाज में। चलिए जी, झूमते और गाते हुए गानों के साथ ही रुबीना खान को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। रिश खान का इंतजार कीजिए, मैं आपसे कल एक बार फिर मिलूंगी 1 से लेकर 4 बजे तक। खान, आपके नाम इस गीत को कि आपको पसंद आया, और हमारे सभी सुनने वालों के नाम, इजाजत, बाय फॉर नाउ।
2: The Magazine Show with Rubina Khan.

0: जैसे
1: सेटको माइक्रोवेव फूड कंटेनर
2: हर मौके पर काम ये आए, घर घर खुशियां लाए।
1: जहां जिंदगी वहां सेटको माइक्रो।
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सफल ट्रेवल?
1: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
4: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250। दैट्स 0161-250-1250.
6: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
7: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
6: Atif Aslam brings his unforgettable sound
7: on Friday, 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
6: Zenby Productions, supported by Rianne's Music.
7: Official radio partner, Lyco Radio, Greater Manchester.
8: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Siddhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurveda that fits your life.

0: मैं जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मोटिवेशनल मंडे मनाएंगे आप और हम यहाँ पे साथ में, यहाँ मतलब कहाँ और कहीं नहीं, बस यही ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, आय हाय हाय हाय, मेरी प्यारी प्यारी लिसनर्स सारे के सारे आए हैं और अपनी अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं। पूछें आप सब से कैसे हैं आप सब, कंग्रेचुलेशंस, मंडे निकल चुका है। हाँ, पूरा भी कभी बढ़िया ही जाना है ना, मंडे का टेंशन होता है ना, और मंडे शाम तो वैसे भी आप लोगों के लिए सॉर्टेड है ना, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो है ही यहाँ पे। द इवनिंग शो विद अश्विनी में आज आपके लिए मैं क्या लेके आई हूँ भाई, कुछ नई चीजें, कुछ वही पुरानी चीजें, हमारे तीन अमेजिंग जो फीचर्स हैं, यादों की बारात, इमोशन ऑफ द डे, गजल कव्वाली, थियरी है, एंड साथ में घर घर की कहानी, कुछ नया लेके आई हूँ, बात करेंगे लेकिन वो होगा सेकेंड आवर में। तो आज का सवाल पूछेगी बहन, बिल्कुल पूछेगी, क्यों नहीं पूछेगी। आज का सवाल थोड़ा प्यारा है, थोड़ा माउथ वाटरिंग है, थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, ठीक है। तो आपको मैं चॉइस पूछना चाहती हूँ, सैंडविच या मम्मी के हाथ का पराठा। ठीक है, मम्मी के हाथ का सैंडविच भी बनता है, लेकिन पराठा जो होता है ना, अभी फॉर अस माई आई यूज टू मेक वो ट्राइंगल वाला पराठा, और उसके ऊपर गुड़ यानी जैगरी एंड मलाई, ओके, ये मिक्स करके एंड देन वो पराठे का रोल बना के देती थी। एक वो था और दूसरा था अचार, जो होता है ना अचार का जो मसाला होता है दैट ऑयल में, वो मसाला पूरे पराठे पे लपेट की एंड उसका रोल बना के देती थी। ओ माय गॉड, आई विल ऑलवेज गो फॉर द पराठा रोल्स जो घर पे बनता था। सैंडविच या पराठा, और अपने अपने पराठे की कहानियां मुझे लिख के भेजिए। थोड़ी देर में हम बात करेंगे थियरी के बारे में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिल सकता है 128 इंडियन रुपी एंड 30 पैसे। Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 7:32 हो रहे हैं, 7:32। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी, मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ। क्या बात है यार, मतलब आज पराठा और सैंडविच, मैंने ये टॉपिक क्या छेड़ दिया, सारे के सारे लोग जो है अरे इमोशनल हो गए भाई। प्यारी प्यारी यादें और बड़ी खुशी के साथ अपनी सारी यादें मुझसे शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल, अपने पराठों की जो कॉम्बिनेशन आप खाते थे प्लीज उसकी भी रेसिपी भेजो यार, मतलब ऐसे हम भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब चलते हैं लाइफ थ्योरी की तरफ। तो हर रोज ही आप सबको मैं कोई ना कोई लाइफ थ्योरी यहाँ पे बताती हूँ। आज बात करेंगे द कार थ्योरी के बारे में। अब कोई भी इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल होगा या नहीं, ये एक बहुत ही छोटी सी टेस्ट से पता चलता है। अब दो प्रकार के लोग होते हैं। फर्स्ट टाइप, जो हाईवे से जा रहे हैं, गाड़ी खराब हो गई तो गाड़ी के बोनेट पे चढ़ के लोगों को हाथ दिखा दिखा के पूछ रहे हैं, अरे भाई कोई तो हमारी हेल्प कर दो, हमारी गाड़ी खराब हो गई, मुझे यहाँ से जाना है, कोई कुछ तो कर दो, मेरी हेल्प कर दो, मुझे यहाँ से लेके जाओ। और सेकंड प्रकार के लोग वो होते हैं, सेकंड टाइप ऑफ पीपल, जो बोनेट खोल के कुछ ना कुछ तो देखना शुरू करेंगे, यार कुछ तो समझ में आ जाएगा, कहीं कुछ अटका है, कुछ सटका है, लेट मी चेक। तो जो सेकंड टाइप के लोग होते हैं ना, अब उन्हें देख के दूसरे उस राह पे चलने वाले लोग, वहां से ट्रैवल करने वाले लोग, वो भी अपनी गाड़ी रोक के इन लोगों के पास आके मदद करते हैं। ये लो भाई, ये मेरे मैकेनिक का नंबर है, देखो यहाँ से थोड़ा पास चले जाओ कि वहां तक ये चीजें हो जाएंगी, रुको मैं आगे जाके ना आपके लिए कोई ना कोई मदद भेजता हूँ। तो अब इस थ्योरी का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना। कुछ लोग जिंदगी के भरोसे बैठ जाते हैं, हाय मेरे नसीब में तो ऐसा ही लिखा है, हाय देखो मुझे कुछ नहीं मिलता, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है मेरे साथ ये हो रहा है ना, होने दो, मेरा डाउनफॉल चल रहा है, चलने दो, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी या मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा, है ना। बिजनेस आइडिया बहुत है आपके पास में और आप ढूंढ रहे हैं कि कोई ना कोई इन्वेस्टर मिल जाए, कहीं से कुछ तो शुरू कीजिए, अपने आप चीजें आएंगी। नौकरी के लिए बिना अप्लाई किए सिर्फ रेफरेंसेस से नौकरी पाना चाहते हो, ये सही तो नहीं है। देखिए हमेशा ऐसा होता है कि जो लोग खुद अपने पे काम करते हैं ना, कोशिश करते हैं, कभी हार नहीं मानते, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हम सभी जानते हैं। और कहीं ना कहीं से ऊपर वाला मदद भेज ही देता है और लोग भी ऐसे लोगों को ऑब्जर्व करके उन्हें मदद करने पहुंच जाते हैं। जरा 2 मिनट पॉज लेके सोचिएगा, आपकी जिंदगी में ऐसे वेल विशर्स, ऐसे मेंटर्स कब आए थे, बचपन से लेके अब तक की पूरी जर्नी सोचिए। आहा, मुझे मत बताइए, क्योंकि ये थियरी आपके लिए है, द कार थियरी। कैसी लगी थियरी जरूर बताइएगा। एंड अब चलेंगे आगे, इसके बाद वाला जो गीत मैंने आपको सुनाना है, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स। एक्चुअली जो प्लेलिस्ट लगती है ना, वो पूरी मेरी फेवरेट होती है, पर उसमें भी होता है ना कि और एक मेरा वाला फेवरेट, तो सुनिए, एंजॉय कीजिए।
0: गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर मैनचेस्टर एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव। This is the Laika Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Laika Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to LaikaRadio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@LaikaRadio.com. Or you can advertise on the Laika Radio Network by emailing sales@LaikaMedia.co.uk. This is Ash Winnie on Laika Radio.
3: Laika Radio.
4: Get ready, UK. Snil Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
5: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snil Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
4: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
5: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
4: For more information, contact 07. 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
7: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danu, prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: Badhiya service se mala mal travel aur bachat karane mein bemisal travel.
9: You mean Subtle Travel?
8: Yes, desh videsh mein dur dur tak mashhoor.
9: Ek baar aazmaiye zarur Subtle Travel.
8: Saaton din kisi bhi waqt phone milaiye aur chahe ghar par ticket deliver karaiye,
9: phir duniya mein kahin bhi ghoom kar aaiye.
10: Call Subtle Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
11: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
12: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
11: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
12: Rich, authentic taste every single time.
11: Royal Chai, brewed for business.
12: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
14: पवन जी, मैंने सुना है आप दोनों के रिलेशंस अच्छे नहीं है.
15: आप सीधे सीधे आरोप लगा रही हो.
16: भाई निकाल माइक.
17: भाई भाई के पिया.
18: The brand new reality TV show Boj Puri Bawal, Monday to Sunday at 10 PM on Colors TV.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
19: It's a dog walk. I do it every day at home. I don't need to plan it. Check the tide. Check my phone. Why don't I need to check my...
20: Hey, boy!
21: Coast Guard, we're stuck.
22: Okay, help's on its way.
21: Hold on, mate.
19: Shoes tied. Phone.
21: Back before dark, love. Okay.
23: In an emergency at the coast, call 999 and ask for the Coast Guard. And please, respect the water.
0: Did you know you can get all the biggest showbiz news stories daily by logging on to LeicaRadio.com or the Leica Radio mobile app, powered by BizAsiaLive.com.
1: This is Leica Radio.
0: Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: मिला ली गई गाड़ियाँ, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 7:44. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. अच्छा, ये गाना मेरा इतना फेवरेट है कि जब भी कोई होता ना, कोई महफिल जमती है और हम लोग सब एक दूसरे को कहते हैं कि गाना गाओ, तो दिस इज माई फेवरेट गाना है ना. तो आप और मैं, हम सब जब भी कभी मिलेंगे, जब भी कभी गैदरिंग होगी ना, मैं ये गीत आप सबके लिए पक्का गाऊंगी, उसमें मुझे पक्का याद दिलाइएगा.
1: ये है लाइका रेडियो. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.83 इंडियन रुपी, 375.11 पाकिस्तानी रुपी, 452.89 श्रीलंकन रुपी, 166.94 बांग्लादेशी टाका, 88.41 अफगान अफगानी, 174.81 केनियन शिलिंग, 1.35 US डॉलर, 63.48 मॉरिशियन रुपी.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is LIKA. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: Gold is currently trading at £104.36 per gram.
1: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com. Leica Radio. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: What a lovely track. आशा फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में, बेहद बेहद खूबसूरत गीत। और जब भी दिल टूटता है, नॉट ओनली इन रोमांटिक रिलेशनशिप लेकिन किसी भी वे में जब दिल टूटता है, तो कहीं ना कहीं ये गीत जो है लोग उससे जरूर रिलेट करते हैं। इस आवर का आखिरी गीत आप सबके लिए, और चलते हैं न्यूज की तरफ।
1: दिस इज अश्विनी ऑन लाइका रेडियो। This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 15th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
2: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
4: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
5: हेरल्ड, न्यू वर्ल्ड ऑफ इको friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो डॉट कॉम ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाब दी बिगेस्ट ट्यून्स।

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. इस आवर का आगाज हमने किया था तो बड़े ही म्यूजिकल गीतों के साथ में. 1947 अर्थ से सुनाया था रुत आ गई जी, एंड सेकेंड वॉज आपके आ जाने से. ओए होए, ये गीत मोस्ट ऑफ द लिसनर्स ने मुझे डेडिकेट किया, कह रहा अश्विनी जी ये आपके लिए. ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच. सी इट्स ऑलवेज एन ऑनर जब आप लोग इतना प्यार से स्पेशली कोई गीत कहते हैं कि बस अश्विनी ये वाला गीत ना तुम्हारे लिए है. थैंक यू सो मच. आई एम इन ग्रैटिट्यूड कि आप सब जो हैं और मैं आप सबसे जुड़ी हूँ इस संगीत द्वारा, लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर द्वारा आपके आ जाने से. इस गीत पे आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ टीनेजर, मी एंड माय कजिन ब्रदर, हम दोनों बहुत डांस किया करते थे. होता है ना टीनेज में कि कोई एक गाना होता है जिसमें आप आपके कजिन्स जो हैं, कोई आपके कजिन में एक ऐसा होता है या एक ऐसी होती है जिनके साथ में ना यू डोंट इवन नीड टू से एनीथिंग, एंड वो जो जोड़ी जम जाती है ना उस कजिन के साथ में, मतलब फुल ऑन मजा आता है. अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट मेरे जो कजिन भाई हैं उन्हें पैंडेमिक में वी लॉस्ट हिम, बट इस गीत पे वो और मैं वी यूज टू डांस सो मच. ओ माय गॉड, दैट वाज so this geet actually makes me smile and I do get tears when I listen to this track because hota hai na yaadein hoti hai hum sab ke paas mein.
1: Like a radio 90s, send money to like India with competitive rates now available with Yono on SBI UK mobile and via the SBI UK branch.
0: Ek pound ke badle aapko milenge 128 Indian rupees and 30 paise. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: रफू चक्रफिल्म से सुनाया शैलेंद्र सिंह और कांचन की आवाज में तुमको मेरे दिल में। सो ऑल माई साइलेंट लिसनर्स, जी हाँ प्यारे प्यारे जो मुस्कुरा रहे हैं अभी, देखो ना गालों में मुस्कुरा रहे हैं, ब्लश कर रहे हैं, हाँ भाई साहब आप, हाँ दीदी आप, हेलो तो कर ही सकते हैं। वही ना, कभी हमारे स्टूडियो आके देखिए इतनी बड़ी स्क्रीन लगा रखी है व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए। तो अगर आप कुछ रिकॉर्डिंग करके हमें भेज रहे हैं, कोई वीडियोस भेज रहे हैं, तो सॉरी हम लोग नहीं देख पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। अपनी भावनाएं हमारे शो के लिए व्यक्त करना चाहते हैं लिख कर भेजिए। आई नो कभी कभी लिखना बहुत बोर होता है, लेकिन लिख दिया करो। सो माई प्यारे साइलेंट लिसनर्स, तुमको मेरे दिल ने, देखो ना इतना प्यारा गीत आप लोगों के लिए प्ले कर दिया, हाँ फिर भी हाई हेलो नहीं हो रही है। ओके तो घर घर की कहानी में अब मैं ये एक नया सेगमेंट शुरू कर रही हूँ सेकेंड आवर के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे घर घर के बारे में, मतलब हम लोग सारे एशियन लोग हैं एंड 19-20 का मामला होगा कि हमारे यहाँ पे ना सिमिलर सिचुएशन होती है। तो अब इस क्वेश्चन का बिल्कुल ईमानदारी से आंसर मुझे चाहिए आप सभी की तरफ से। सो मीडिया जो है, मतलब जो सीरियल्स हैं, हमारे पेरेंट्स की जिंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। एशियन कंट्री चाहे जो भी कंट्री हो, हम जब उन्हें कॉल करें और उनका फेवरेट अगर सीरियल कोई चल रहा है ना, तो वो फोन उठा के हाँ हाँ, मतलब बाकी सारी चीजें छोड़ो तुम कैसी क्या ना, तो उनके हाँ हाँ से समझ में आता है कि पक्का इनका कोई फेवरेट सीरियल चल रहा है। तो ओवर द इयर्स जो है, व्हेन आई यूज टू कॉल माय पापा, अब तो पापा अपने हाँ हाँ हाँ, मैंने बोला पापा पक्का कोई सीरियल चल रहा है आपका, तो बोलते कि हाँ बेटा वो टीवी पे ना अभी मेरा सीरियल आया। तो मैं काफी सालों तक ना बीइंग अ गुड गर्ल मैं सुनती रही। उसके बाद में एक दिन मैंने फिर पापा से बात करी, मैंने कहा पापा आज आपको चुनना पड़ेगा वो सीरियल या मैं। फिर भी पापा ने सीरियल को चुना था। कहते बेटा आज का आखिरी एपिसोड है, प्लीज देखने दे, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। क्या आपके साथ ऐसा होता है या आप अपने बच्चों के साथ ऐसे करते हो? आज पूरी ईमानदारी, देखो सोमवार का दिन है, 10th of August, आज हिस्ट्री ज्योग्राफी बायोलॉजी सारी चीजें होके रहे, बताओ क्या आप ऐसे करते हो कि बच्चों का कॉल है तो मेरा सीरियल चल रहा है टीवी पे, अभी मैं देख के फिर बात करता हूँ, क्या आपको ये जवाब मिलता है? चलिए घर घर की कहानी से ये नया सेगमेंट शुरू होगा, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स ज्यादा आता है तो ये कंटिन्यू करेंगे, रोज कुछ नया इसमें बात करने वाले। ओके
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to LeicaRadio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@LeicaRadio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@LeicaMedia.co.uk. This is Ash Winnie on Leica Radio.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Dhurandhar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Dhurandhar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 p.m. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries, and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Location, location, location.
6: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
5: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
6: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
5: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
6: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
5: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
6: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
5: High appreciation.
6: In Dubai.
7: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055, we could be short by 5 billion litres a day.
8: Hold on, miss. 2055. We'll be grown ups by then.
9: We're not having that, are we?
8: No. Oi, hear that? It's water and cannons.
10: And fix those drips and drops.
11: And take shorter showers, yeah?
12: Because when we work together,
13: it all adds up.
14: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
14: It was just another day. A familiar drive through familiar country. But then, just around the corner, came the unexpected. He'd let his speed creep a little too high as he approached a bend. And he was no longer driving at the right speed for the road. The scary thing is, he didn't even realize. Driving even a little too fast for the situation is a major cause of collisions, especially on country roads where you don't know what's around the corner. Think. Don't let your speed creep.
15: Pepe's, famous for flame-grilled marinated chicken with over 215 stores nationally. Download the Pepe's app where you can choose to have your order collected or delivered. Delivery is available in selected stores. Every first order on the Pepe's app, customers receive a 10% discount. Plus a chance to spin to win some fantastic prizes. Order at Pepe's today.
1: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
16: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the Leica Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
16: This is Leica Radio.
1: Greater Manchester.
16: Leica Radio.

0: Feel Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
0: Laika Radio. It's summer on the Laika Radio Network. This is Laika Radio.
2: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Laika गोल्ड रेडियो Laika रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड Laika रेडियो मिडलैंड्स पर
3: इमोशन ऑफ द डे

0: Emotion of the day.
1: Emotion of the day.
2: Leica Extra podcast updates.
3: एपिसोड 28 आ चुका है. इज एस्ट्रोलॉजी रियल और अ ट्रैप? और इस एपिसोड में एस्ट्रोलॉजर्स, पाम रीडर्स, क्या ये कितना सच है, कितना स्कैमिंग है, इस चीज पे काफी अच्छे से डिस्कशन हुआ है. होस्ट किया है हमारी अपनी प्यारी खुश ने, तो जरूर देखिएगा, जरूर सुनिएगा. एंड लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल है स्पॉटिफाई, यूट्यूब, एमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स.
2: लाइका एक्स्ट्रा.
3: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना है. तो 8:40, लता मंगेशकर, नितिन मुकेश की आवाज में क्या जबरदस्त गीत था मेरी जंग फिल्म से. दैट वाज मोटिवेशनल मंडे के लिए. तो भाई इस गीत में काफी लोग इमोशनल हो रहे हैं. प्लीज इमोशनल ना हो, अपनी अपनी जिंदगी जहां तक भी आप आए, एक तो खुद को बड़ी अच्छे से दे दो शाबाशी, दूसरों के लिए मत रखो. आज जहां तक आप पहुंचो ना, बहुत अच्छी तरीके से पहुंचे हो. अब नेक्स्ट ट्रैक थोड़ा सा वॉल्यूम अप करिए, सुरेश वाडकर एंड अनवर की आवाज में.
2: This is Ash Winnie on Leica Radio.
4: Leica Radio.
5: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410. साउथहॉल ट्रेवल. Atoll protected.
6: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk. UK.
7: Tasty swag and sweet charm. Every spoon feels like a tropical warm. Make puri and amras or milkshake full. Taste itna pure, ho jaye happy soul.
8: Mango season has arrived. Here also with Jaimin's Mango Pulp. No added preservatives or colors. Only purest taste of mangoes.
7: Jaimin Foods Mango Pulp. Available now.
2: Leica Radio Network. Proud hospitality partner. Ragasan.
9: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
10: Four beers, please, garçon!
9: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
2: Advertise your brand on Leica Radio, Greater Manchester, and reach out to hundreds of thousands of listeners across the northwest of England. Call 0161 250 8222. That's 0161 250 8222.
11: Dreaming of Europe? Explore Paris, Switzerland, Holland, Italy and more with Mantra Holidays. Our tours offer authentic Indian food, experienced tour managers and Schengen visa assistance for a hassle-free journey where we take care of everything. Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-6333 now. That's 020-3773-6333. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: Bollywood's biggest 90s songs, non-stop.

0: ये है लाइका रेडियो। Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.87 इंडियन रूपी, 375.07 पाकिस्तानी रूपी, 452.8 श्रीलंकन रूपी, 166.92 बांग्लादेश टाका, 88.47 अफगान अफगानी, 174.76 केनियन शिलिंग, 1.35 यूएस डॉलर्स, 63.46 मॉरिशियन रूपी।
0: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Listen wherever you are by downloading the LIKA Radio mobile app now. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Gold is currently trading at £104.47 per gram.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: बिलाल की घड़ियां देखते हैं, टाइम कितना हुआ है, 8:50, इट्स 8:50 अगस्त की 10th तारीख भी हो गई है, मंडे भी खत्म हो गया है, सेकेंड आवर भी खत्म होने जा रहा है। मैं ना एक तो सल्यूट मारना चाहूंगी सारे के सारे ऑनेस्ट पेरेंट्स को जिन्होंने मेरे सामने कबूल है करके कहा कि हम वो पेरेंट्स हैं जो हमारे बच्चे जब फोन करते हैं और हम उनसे कहते हैं कि भाई हमारे सीरियल शुरू है, बाद में बात करेंगे। एंड मेरे जैसे कोई कई बच्चे हैं जिन्होंने मुझे मैसेज करके कहा, अश्विनी हम तुम्हारी ही बोट में, सच में हम जब इंडिया या पाकिस्तान फोन करते हैं हमारे घर वाले कहते हैं कि भाई अभी तो यहाँ पे ना सीरियल चल रहा है बेटा, बाद में आराम से बात करेंगे। इट्स ओके, इट हैपेंस। लास्ट ट्रैक इस आवर का जो सुनाने वाली हूँ, लता मंगेशकर की आवाज में ब्यूटिफुल ट्रैक अनुपमा फिल्म से धीरे धीरे मचल, आहा मतलब मजा आ गया। आप लोग पूछ रहे हैं भाई वीकेंड कैसा रहा, वीकेंड बड़ा अच्छा रहा। कई लोगों ने पूछा कि आज हैप्पी कैसे हैं, क्यों ज्यादा हैप्पी है। हैप्पी इसलिए हैं कि एक प्ले की रिहर्सल्स आज शुरू हुई, तो मैं एक एक्टर भी हूँ। एंड एक्टर के लिए सबसे मजेदार चीज और बड़ी हैप्पी जोन जब होता है जब वो थिएटर प्ले करने उन्हें मिलता है। सो यस, आई एम इन हैप्पी जोन, और आप लोगों का साथ यहाँ पे मिलता है तो और भी मजा आ जाता है। सो प्रोडक्टिव डे एंड अ हैप्पी डे।
0: लाइक अ रेडियो वेयर बॉलीवुड कम्स फर्स्ट। This is Ashwini on Leica Radio. Leica Radio. This part of the show is brought to you by 108 Base Hospital Uri. Starts 50th of August every Saturday and Sunday at 7 PM on Colors TV.
2: I hope Major Naina, hum log waqt par pahunche.
3: Weddings, celebrations, corporate events. At Ragasan, we take care of everything from sourcing the perfect location, designing incredible themes, and creating world-class cuisines and managing every detail through to the finish. With over 30 years of experience, we specialize in delivering truly exceptional class events. Call us on 020-8839-0880 and visit ragasan.com to begin your journey. Ragasan, locate, design, manage, cater.
4: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai. Southall Travel. Call 0208-574-8410. 0208-574-8410.
0: Southall Travel can take you there.
5: Southall Travel. At all protected.

0: भाई ये जो मैडम इनके साथ में गीत गा रही थी उन्हें गुलाब का फूल मिला कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे ढेरों गुलाब के फूल मिल गए मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स की तरफ से। क्या बात है भाई, बहुत बहुत मजा आया। दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। वेलकम जी, वेलकम। इस आवर का आगाज हमने किया था पूछो जरा पूछो, और उसके बाद में फूल गुलाब का। मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में बीवी हो तो ऐसी, विच वॉज रिलीज इन 1988, उसमें से सुनाया आप सभी को ये गीत। 80s वाले बच्चे खुश, 90s वाले उसके पहले खुश, तो हमारा काम अच्छा हुआ हम भी खुश हुए। मुकेम खुश हुआ, अश्विनी यहाँ पे खुश हो गई कि आप लोग खुश हुए। हाँ तो आज किसी का बर्थडे होगा, एनिवर्सरी होगी, किसी की नौकरी लगी होगी, किसी की नौकरी जाने के चांसेस हो गए, किसी के लिए न्यूट्रल दिन होगा, लेकिन आज बहुत सी और भी चीजें मनाई जाती है। आज मनाया जाता है व्लॉगिंग डे, साथ मनाया जाता है वर्ल्ड लायन डे, साथ मनाया जाता है नेशनल लेजी डे, आफ्टरनून टी वीक, नेशनल स्पॉइल योर डॉग डे, स्काई स्क्रेपर अप्रिसिएशन डे, नेशनल कनेक्टिकट डे एंड नेशनल लेजी डे को लेकर मुझे उत्सुकता ये है सुनने में कि आपके घर का वो लेजी बम कौन है जो पड़े रहते हैं लेजी जैसे सोफे पे आराम से, जहां आपको बोलना पड़ता है, और उस लेजी इंसान पे कतई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। क्या आप भी ऐसे थे बचपन में, कभी लेजी थे या अभी भी है? हर फैमिली में एक तो ऐसा लेजी पर्सन होता है, चाहे एक्सटेंडेड फैमिली हो या हमारी इमीडिएट फैमिली या हम खुद भी हो, है ना। बट एनीवेज, सैंडी जी ने जब सवाल पूछा था हमारी जब एंट्रिंग चल रही थी कि जस्ट 48 मिनट्स केवल रेस्ट कर लेती हैं महिलाएं फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ व्हाट ही मेंशन, इसमें तो ये लेजी लोग तो बिल्कुल भी नहीं आते। बताइए जरा, आप भी देखिए, सोच के बताइए।
1: Send money to India with competitive State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ash Winnie on Leica Radio.
2: Leica Radio.
3: This part of the show is brought to you by Durandar.
4: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
3: Mega blockbuster Durandar on Utsav Gold, 15th and 16th of August at 9 PM.
5: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
6: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410, दैट्स 85748410।
7: साउथ हॉल ट्रेवल, Atoll protected. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalog today. Call on 0208-507-7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies. Supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
8: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favorites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
9: ये है लाइका गो

0: UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128 इंडियन रुपी एंड 30 पैसे. And don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
0: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. 9:27 इट्स 9:27 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. मोटिवेशनल मंडे मना रहे हैं आप और हम साथ में. अभी भी आधा घंटा बाकी है शो खत्म होने में. अब कुछ लोगों के गुड नाइट के मैसेजेस शुरू हो गए पर रेडियो शुरू रखिएगा क्योंकि दो तीन अच्छे अच्छे गीत फिर आप मिस न कर जाएं. तो गजलिया कव्वाली मैं क्या सुनाने वाली, जी मैं आज सुनूंगी आपको कव्वाली. मंडे है, मंडे की शुरुआत थोड़ी मस्ती भरी रहे और थोड़ी उत्साहपूर्ण रहे तो हम सबके लिए अच्छा होगा, है ना. एन आर्टिस्ट ऑफ द वीक में लता मंगेशकर के गीत आप सुन रहे हैं. लता जी के गीत उफ आहा बाबा, बस इसके अलावा कुछ कह ही नहीं सकते. पाकिजा फिल्म से ये गीत, व्हाट अ ब्यूटीफुल ट्रैक दिस वन इज. और इसमें इसकी कंपोजिशन देखिए, इसके लिरिक्स देखिए, मतलब आप बस सुनते ही जाते हैं. कितने सारे लोगों ने फटाफट जो है इस गीत पे, आप सभी ने अपनी अपनी रिएक्शंस नहीं बोलूंगी, रिस्पांस बोलूंगी क्योंकि रिस्पांस पॉजिटिव होता है ना. पाकिस्तान वॉज रिलीज इन 1972 लता मंगेशकर की आवाज में. थारी रही हो. अगला गीत कौन सा सुनाने वाली हूँ आप सभी को. भाई ऐसा है कि दोस्ती हम सब की जिंदगी में ना बहुत मायने रखती है, है ना. और हो सकता है कि अभी कुछ लोग ट्रैफिक में फंसे हो, कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हो, अब हल्की फुल्की नींद आ रही हो, तो आपकी नींद उड़ाने के लिए थोड़ा ये एक म्यूजिकल ट्रैक आपके लिए प्ले कर देंगे. मैंने प्यार किया इस फिल्म से. वॉल्यूम अप रखना चाहते हैं जरूर रखिएगा. और दो तीन गीत जो बचे हैं इस आवर के, वो सारे के सारे जो हैं इतने जबरदस्त है कि आप कहेंगे आहा क्या बात है बाबा. तो मोटिवेशनल मंडे हम लोग आज मना रहे हैं, कल होगा टेरिफिक ट्यूसडे. आगे बढ़ते हैं अभी.
2: Like a radio. Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Like a gold in London, the Midlands and Manchester.
0: This is Ash Winnie on Like a Radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: After the smash hit run in 2025, Surrenderella is back for 2026. From the producers of Britain's Got Bungalow and The Deranged Marriage, Rifko Theatre Company turned this classic panto tale on its head and give it an exciting Dizzy twist. Touring to the Palace Theatre, Manchester, Friday the 4th of September to Saturday the 5th of September. Click RifkoTheatre.com for more info, and with tickets from just £15, make sure you book before the clock strikes midnight. Come join Surrenderella this summer as she goes back into the Bollywoods. Surrenderella, panto fun for all the family.
6: Radio partner Leica Radio.
7: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
8: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
7: Atif Aslam brings his unforgettable sound
8: on Friday 11 September at the AO Arena Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
7: Zembi Productions, supported by Rianne's Music.
8: Official radio partner Leica Radio, Greater Manchester.
9: The wait is over. Imran Hashmi returns in the next chapter of a cult classic, Awarapan 2. Releasing in cinemas on August the 14th. For your nearest cinema listings, visit Bakronia Media on Instagram.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
10: noticed the way fans shout at football matches?
11: Oh, wake up!
10: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
12: Uncle G spent £40,000 on rent, but zero online. His shop is empty. His nephew's TikTok is booming. Be seen. Visit HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Outdated is out of business. Visit HeartyHanks.com today.
13: Making summer feel better on the Leica Radio Network.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.86 इंडियन रुपी, 375.04 पाकिस्तानी रुपी, 452.81 श्रीलंकन रुपी, 166.93 बांग्लादेशी टाका, 88.47 अफगान अफगानी, 174.75 केनियन शिलिंग, 1.35 यूएस डॉलर, 63.46 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands with the UK's biggest Asian hits. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: Gold is currently trading at £104.60 per gram.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: चलिए टिक टिक करते हुए घड़ी घड़ी जरा एक बार टाइम चेक करवा लीजिए मैडम. तो यस, टाइम चेक हो जाए 9:40 नहीं 41 हो रहा है एक्चुअली. सो नियरली 41 पास 9 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. गोल्ड नाइट्स हमारी ओवरनाइट सर्विसेज जरूर सुनिएगा. लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2. जितना मजा आज आप लोगों को आया है शो में, उतना ही मजा मुझे आप सबके साथ में मोटिवेशनल मंडे सेलिब्रेट करने में आया है. कल आप और हम मनाएंगे टेरिफिक ट्यूसडे. अपना खूब ख्याल रखिएगा, है ना. मंडे निकल चुका है, नया सप्ताह आया है. नया सप्ताह कुछ ना कुछ नयापन लेके जरूर आएगा हम सबकी लाइफ में. गजलिया कव्वाली में क्या सुनाने वाली, तो मैं आप सबको सुना रही हूँ बरसात की रात से बहुत ही बढ़िया सी कव्वाली, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा, शंकर शंभू की आवाज में. एंड लास्ट ट्रैक जो होगा वो भी जरा मस्ती भरा है, किस्मत फिल्म से कचरा मोहब्बत वाला, आशा भोसले एंड शमशाद बेगम की आवाज में. सो बहुत ही बढ़िया गीत लाइंड अप है आपके लिए. वॉल्यूम अप रखना चाहते हैं, हाँ अब रात हो गई ना. नहीं तो लोग आएंगे कि अश्विनी का शो तुम सुनते हो और इतना वॉल्यूम जो है बढ़ा के रखते हो. जी अभी भी धूप रहेगी तो प्लीज अपने आप का ख्याल रखिए. लोगों को धूप की वजह से हेडेक्स होते हैं क्योंकि वो हाइड्रेटेड नहीं रहते, तो खूब पानी पीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए. खाना पीना सोना एंड म्यूजिक की जिम्मेदारी शाम में, ये जो 7 to 10 जो एंटरटेनमेंट है उसकी जिम्मेदारी मेरे नाजुक कांधों पे, और आप सबके साथ में गपशप करने में यहाँ पे खूब खूब मजा आता है. सो प्यार बड़े काम की चीज है, प्यार दो, प्यार लो एंड लाइफ कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ. ऑन दैट नोट आई हैव टू से लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.
2: ये है लाइका रेडियो. This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.
3: This is LIKA Radio.
0: Greater Manchester. Feel Good Track is brought to you by the LIKA Radio mobile app. Download it from iOS and Android devices.
3: This is LIKA Radio.
0: Greater Manchester.
3: LIKA Radio.

0: on to Laika Radio 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवरटाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
2: Laika Radio, Greater Manchester. The sounds of love in Manchester.

0: सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का लंच या शाम का डिनर, सब कुछ एक ही जगह, बल्कि नाश्ता अवेलेबल ऑल डे। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट्स में एंजॉय करिए हलवा पूरी, पाए, निहारी, मगज, पराठे और बिरयानी, साथ ही लजीज डिजर्ट्स, फालूदा शेक्स, कड़क चाय, कॉफी और ठंडी लस्सी का मजा लें। ग्रैंड ओपनिंग ऑन जुलाई 11th, आज ही तशरीफ लाइए। 881 स्टॉकपोर्ट रोड, मैनचेस्टर, M19 3PG। तहजीब स्वीट्स, बेकर्स एंड रेस्टोरेंट, हर वक्त हर जायके के लिए।
1: Voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs.
2: Borderless World presents Atif Aslam live in concert.
1: Atif Aslam brings his unforgettable sound
2: on Friday 11 September at the AO Arena, Manchester. Tickets are now available on Ticketmaster.
1: Zembe Productions, supported by Rianne's Music.
2: Official radio partner, Lyco Radio, Greater Manchester.
3: Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 PM on Colors TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Lioncroft.
4: Did you hear that? It's space on the radio for your business to advertise. Call us now on 0161 250 822 and be a part of the largest commercial radio station in the northwest of England. Or email sales@lycaradio.com.
5: You've got great products, loyal customers, but no digital strategy. You're one scroll away from being forgotten. Don't risk it. HeartyHanks.com. Hearty Hanks. Don't disappear. Dominate. Visit HeartyHanks.com today.
6: Yeah, like a goal.

0: जिंदगी। लिसन टू लाइक अ गोल्ड 2 ऑन लाइक अ रेडियो मोबाइल ऐप लाइक अ रेडियो .com एंड Alexa प्ले लाइक अ गोल्ड 2। We are Leica Radio.
1: Leica Radio.
0: Listen to us in Greater Manchester and Greater London. Don't forget, in London, we're available on 1458 AM and DAB. Download the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows. The sounds of love in Manchester. The love sound. Leica Radio.